सुप्रभात, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक 1948, आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम

से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप जानकारी प्राप्त करेंगे झारखंड में रेशम पालन एवं सरकारी सहायता विषय पर। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रवीण सेट्ठी।

कार्यक्रम खेती की बातें में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं झारखंड राज्य में रेशम पालन एवं सरकारी सहायता विषय पर। जी हां, झारखंड राज्य तसर रेशम का देश में अग्रणी उत्पादक है, जहां की जलवायु और वन संपदा रेशम कीट पालन यानी तसर शहतूत एरी के लिए अत्यंत अनुकूल है। हम आपको बता दें श्रोता मित्रों, हमारे राज्य में रेशम तसर सिल्क पालन से लगभग 1.5 लाख आदिवासी परिवारों को सीधे रोजगार और आजीविका मिल रही है। यह राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रमुख माध्यम बन चुका है। यह कृषि पर निर्भर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए अतिरिक्त आय का बड़ा स्रोत है। तसर पालन से जुड़ी महिलाएं कम समय में ही हजारों रुपए तक की कमाई कर रही हैं। भारत के कुल तसर रेशम उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा अकेले झारखंड से आता है। यहाँ का रेशम अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए अमेरिका सहित कई देशों को निर्यात किया जाता है। तसर कीट मुख्य रूप से अर्जुन और आसन के पेड़ों पर पलते हैं। इससे जंगलों और पेड़ों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता। तसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की मदद से हमारे किसान भाई बहनों को उन्नत बीज, तकनीकी प्रशिक्षण और उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। झारखंड का सिल्क पार्क ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार के उद्योग विभाग और केंद्रीय रेशम बोर्ड कई योजनाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। झारखंड राज्य का मुख्य रेशम, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से

0: सिंहभूम, रांची और संताल परगना जिलों में होता है। यह है अर्जुन, आसन और साल के पेड़ों पर पाला जाता है। राज्य में शहतूत कीटों का पालन भी किया जाता है, जिसके लिए विशेष पालन घर की आवश्यकता होती है। नदियों के किनारे अंडी के पौधों की मदद से एरी रेशम का उत्पादन भी राज्य में किया जा रहा है। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर अनुदान दिया जाता है। रेशम कीट पालन के लिए आवश्यक उपकरण, रसायन और बीजगार के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है। किसानों को यंत्रों और उपकरणों पर 75% तक की सब्सिडी या कुछ विशेष योजनाओं में 90% तक का प्रावधान है। उन्नत नस्ल के रोगमुक्त चकतों का वितरण बहुत ही कम मूल्य, लगभग 12 रुपए प्रति 100 पर किया जाता है। कीट पालन गृह के निर्माण, वृक्षारोपण और सिंचाई की सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है। किसान भाई बहनों को तकनीकी सहायता और बुनियादी बीज उपलब्ध कराने के लिए गाँव में रेशम दूत नियुक्त किए जाते हैं। कोकून से धागा निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनों को बढ़ावा दिया जाता है। झारक्राफ्ट द्वारा किसानों से सीधे कोकून की खरीद सुनिश्चित की जाती है। नए और पुराने कीट पालक अपने क्षेत्र के नजदीकी अग्र परियोजना केंद्र, टसर सेरिकल्चर सेंटर या फिर जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड सेरिकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से योजनाओं और पंजीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। झारखंड सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से विभिन्न रेशम उत्पादन विकास योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आम जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना है। सरकार द्वारा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड राज्य में 17 योजनाएं लागू की गई। तसर रेशम उत्पादन करने वालों में से 85% से अधिक आदिवासी समुदाय से हैं, जो रेशम के कोकून बनने से पहले की अवस्था में आते हैं, जो वर्तमान समय में इस व्यवसाय से जुड़कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो श्रोता मित्रों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन। गौतम बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ा युद्ध अपने ही विरुद्ध है। यदि आप स्वयं को जीत लेते हैं तो समझो आप संसार को भी जीत गए। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय सुबह के 6:16 हो रहे हैं। अब आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम वंदना में। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं श्रोताओं ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं। ये स्वर है लता मंगेशकर का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। गायक है मन्ना डे।

मन्ना डे के गाए भक्ति गीतों के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

सीता सोमवार वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65

अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर श्रोताओं आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें। 7:20 का हमारा समय होगा लोक गीतों का और 7:35 पर हम आपको सुनवाएंगे बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह के 7:50 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुन सकते हैं 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का हमारा समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 8:45 पर फिल्म संगीत लेकर हम आपके साथ होंगे। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरंजना में एक ही गीतकार के रचे गाने। 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और यहीं से प्रसारित किया जाता है 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण। 10:20 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। दोपहर के 12 बजे श्रोताओं एक बार फिर से आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 12:05 का हमारा समय होता है भाव गीत का। 12:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। दोपहर 1:20 और 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 3:30 पर सुगम संगीत का प्रसारण होगा और 3:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर कार्यक्रम परिक्रमा की प्रस्तुति होगी और 4:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 5:02 का समय होता है युवा साथियों का, आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और संध्या 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:10 का समय होगा झारखंड के लोकगीत का। संध्या 6:30 पर श्रोता सुनते हैं कृषि जगत। संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से रिले किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम आलोक। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9 बजे यहीं से आप सुनते हैं न्यूज़ एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे श्रोताओं आज के दिन आप सुनते हैं आपके फ़ोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का गाया ये गज़ल। और इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और आइए अब सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मैथिली गीत मिथिलेश मिश्रा और साथियों से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना मिथिलेश मिश्रा से मैथिली गीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान रूपांकर से।

श्रोताओं, अभी आप सुनते थे रूपांकर की आवाज़ में आधुनिक गान, और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा के आज के संक में श्रोताओं आप सुनेंगे भेंट वार्ता बच्चों में दस्त कारण और निदान विषय पर। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नितेश्वर प्रसाद सिंह, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज बातें बच्चों में दस्त कारण और निदान इस विषय पर। अक्सर लोग बच्चों में दस्त होने की शिकायत करते हैं, किन कारणों से दस्त होता है और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेश्वर प्रसाद सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि दस्त को हम वास्तव में पहचाने कैसे।
1: दस्त एक पाचन तंत्र संबंधी एक विकार है, ऐसे हम लोग इसको डायरिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। यह समस्या होने पर मल पानी की तरह पतला होता है। आंत से संबंधित यह रोग मुख्य रूप से रोटा वायरस के कारण होता है। यह साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे जीवाणुओं के कारण भी होता है। इसके अलावा आंतों में सूजन, कुछ दवाओं के सेवन से भी यह हो सकता है। यदि बच्चे प्रॉपर हाइजीन बनाए रखने के साथ ही स्ट्रीट फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, मैं थोड़ा बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो अगर साफ सुथरा पानी नहीं पीते हैं, पानी में कोई गंदगी होती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है। हालांकि डायरिया होने के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको आईबीडी के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा,
1: ये बड़े लोगों में, बच्चे जब बड़े होते हैं तब, बच्चों में भी पाया जाता है, 5 साल 7 साल के बच्चों में मिलता है। हम कभी अनहाइजेनिक फूड ले लिए, गंदा पानी ले लिए, किसी भी कारण से बाहर में है, जी बाहर के खाने में, तो उसकी वजह से हमारे आंत में एक इन्फेक्शन हो जाता है। अब आईवीडी जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन पैदा करता है तो वहां से लेके मलाशय तक के एरिया को इन्फेक्टेड कर देता है। जब आपका पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशेषित करने में विफल हो जाता है, इसको माल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सपोज कीजिए आप खाना खा रहे हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार शिकायत

0: महत्वपूर्ण चीज है,
1: पानी की कमी
0: जी, छोटे बच्चे को इससे जान का खतरा भी हो सकता है।
1: अच्छा।
0: ये जो डायरिया है ये किसी भी हालत से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इसको,
1: ये दुर्गामी परिणाम भयंकर हो सकता
0: जी,
1: है।
0: जी जी,
1: तो शुरुआती लक्षण अगर दिखने लगे तो सबसे पहले घरेलू उपाय क्या करना चाहिए?
0: चिकित्सक को मिलने जाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों में अचानक पेशाब कम होने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। मुंह का सूखना, बच्चे का ओट सूखने लगेगा, उसके जीभ तालू में सट जाएंगे, सिर दर्द होना बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है ये, थकान, बच्चा खेल रहा है लेकिन तुरंत तुरंत थक जा रहा है, बुखार 102 डिग्री फारेनहाइट या उससे ज्यादा भी हो सकता है, स्टूल काला हो सकता है, स्टूल में खून आ सकता है, स्टूल में मवाद आई मीन म्यूकस आ सकता है, आंखें, अब मैं बता दूं आपको कि उसकी आंखें धस जाती है।
1: अच्छा,
0: अंदर की तरफ,
1: यस सर,
0: अंदर की तरफ, मतलब ये डिहाइड्रेशन का बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है। इस हालत में तुरंत चिकित्सक के पास या किसी अस्पताल में बच्चों को लेके जाना चाहिए। डायरिया होने पर तुरंत किसी मेडिकल टेस्ट की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे किसी को डायरिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि हमको एक्सरे कराना है या ब्लड टेस्ट कराना है, लेकिन हमको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले मेडिसिन चाहे ओरल ले या सेलाइन के माध्यम से हमको शरीर में पानी की जो कमी हो रही है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। अगर इन्फेक्शन है तो उसकी जगह पर डॉक्टर अपने हिसाब से जो दवा उनको ठीक लगेगा वो अपना दवा देंगे।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और उन्हें दस्त की शिकायत हो रही है तो डॉक्टर सिंह ने जैसा बताया उनकी बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर दस्त से कुछ राहत मिलेगी आपके बच्चों को। अगर उससे भी राहत न मिले तो तुरंत किसी डॉक्टर से परामर्श लीजिए, तभी आपका बच्चा स्वस्थ रह सकेगा। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, बच्चों में दस्त कारण और निदान विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नितेश्वर प्रसाद सिंह, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने

0: बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का

0: आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूँ और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
2: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगी देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। केंद्रीय कृषि मंत्री अलनीनो और कम बारिश को लेकर आज सभी राज्यों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश। रांची में एसआईआर को लेकर बीएलओ को मिला विशेष प्रशिक्षण। 30 जून से घर घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन। प्रशासन ने जनता से की सहयोग की अपील। दुमका वन प्रमंडल के मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को मिला प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में दिया गया सम्मान। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग का फाइनल आज रांची के जेएससी स्टेडियम में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस भव्य समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिवंगत नेता तिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। इस विशेष अवसर पर उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच पार्टी नेता और राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है।
1: चिंता भी है कि जिनके उनके कदकाठी के अनुरूप दिली इच्छा थी पूरे राज्यवासियों की उनको भारत रत्न मिले, हम आगे भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनके कदकाठी के अनुरूप, उनके कार्यशैलियों के अनुरूप, उनकी जो त्याग बलिदान है उसके अनुरूप उनको भारत रत्न मिले।
0: अलनीनो और कम बारिश को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे सभी राज्यों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। राज्य के कृषि सचिव अबुबकर सिद्दीकी ने कहा कि विभाग सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक खेती के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम लोग हर एक जिला के लिए कंटिजेंट एक्शन प्लान तैयार कराया है। स्टेट लेवल पे भी एक्शन प्लान तैयार कराया गया है। जिस जिला में जो आइटम सूटेबल हो सकता है उस हिसाब से हम लोग एक कंटिजेंट प्लान तैयार किया गया है, ताकि इनकेस पानी का शॉर्टेज पड़ जाने पर हमारा किसान का खेत खाली नहीं रहे। साथ ही साथ हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी लाइन अप कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री भी इसका समीक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग हर लेवल पे इसको अलर्ट करके रखा हुआ।
0: रांची जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ और सुपरवाइजरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और सत्यापन किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है। दुमका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल

0: मसान जोर के चर्चित इको कॉटेज प्रोजेक्ट को इस वर्ष के प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुमका के वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सबको छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में मचे घमासान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली और चुनावी नतीजों से खुश नहीं है तो उसे सरकार से अपना समर्थन तुरंत वापस ले लेना चाहिए।
3: कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी की बातों को आगे वो नहीं मान रहा है। लोग कांग्रेस को छोड़ करके लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं, उसको उसके बारे में विचार करना। वोट हमें नहीं दिया तो सरकार से उनको समर्थन ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए।
0: धनबाद में आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर सरकार के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों अपराधियों के गठजोड़ के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
4: जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए आर्थिक शोषण करने के लिए जो लगातार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, जो व्यवस्था में बनी हुई है, सरकारी दफ्तरों का ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। अधिकारियों ने जो परंपरा बना दी, जिस तरह से सरकारी संसाधन को अपना अधिकार समझ कर दोहन कर रहे हैं, झारखंड की भावना, झारखंडी भावना अस्वीकार करती है।
0: केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम ने रामगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बरकर सयाल क्षेत्र के सौंदा स्थित रीजनल स्टोर में छापेमारी कर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के चीफ स्टोर कीपर अरुण सिन्हा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुरक्षा कार्य के बदले घूस मांगने की शिकायत पर की गई है। झारखंड T20 क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में आज छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच भिड़ंत होगी। रांची के JRCS नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में दोनों टीमों के बीच इस पहले संस्करण का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में जमशेदपुर स्टीलर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को 79 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पद्मभूषण गुरुजी, पत्नी रूपी सोरेन आज राष्ट्रपति के हाथों लेंगी सम्मान। प्रभात खबर लिखता है, कॉपियों की ऑनलाइन जांच में कई जवाब स्पष्ट नहीं दिखने से उनके अंक ही नहीं मिले, दोबारा मूल्यांकन में 6% तक बढ़े अंक। हिन्दुस्तान

लिखा है नीट झारखंड की दो छात्रा समेत 30 लोग गिरफ्तार। दैनिक जागरण के शब्द हैं नॉन इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगी देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। केंद्रीय कृषि मंत्री अलनीनो और कम बारिश को लेकर आज सभी राज्यों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश। रांची में एसआईआर को लेकर बीएलओ को मिला विशेष प्रशिक्षण। 30 जून से घर घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन। प्रशासन ने जनता से की सहयोग की अपील। दुमका वन प्रमंडल के मसांजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को मिला प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में दिया गया सम्मान। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग का फाइनल आज रांची के जेएसए स्टेडियम में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

बॉम्बे इस फिल्म का आप सुन रहे थे। ये गाना चित्रा की आवाज़ में महबूब के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत बजरंगी भाईजान फिल्म से। आवाज़ें राहत फ़तेह अली खान और रेखा भारद्वाज की है। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनवाते हैं फिल्म देवदास से ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार हैं नुसरत बद्र और संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

श्रोताओं, फिल्म देवदास के इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक निजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थानों के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की

मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास खतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरंजना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर। हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर।
6: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों अब हम हाजिर हैं सुरंजना लेकर। कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के रचे गाने, और आज के गीतकार हैं नीरज।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना में आज शब्दकार नीरज के रचे गाने।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं शर्मीली, गैम्बलर, प्रेम पुजारी और कन्यादान। आवाज़ें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। संगीत निर्देशन था SD बर्मन और शंकर जयकिशन का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे ख्याल गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से, राग जौनपुरी पर।

ಮಾಡಿದ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी पर आधारित ये ख्याल गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया कि अमरीका अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने देने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। ये हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से

0: आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन का है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 168 लाख टन था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार की रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए थे। ईरान ने स्विट्जरलैंड में अमरीका के साथ वार्ता के पहले दौर के बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को हथियारों के निरीक्षण की अनुमति देगा। श्री जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान बातचीत के बाद परमाणु निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। श्री वेंस ने यह भी कहा कि इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से शीघ्र बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल बातचीत में अमरीकी वित्त विभाग ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से 60 दिन की छूट दी है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी तथा ईरानी कच्चे तेल का उत्पादन अमरीकी डॉलर में बिक्री और आपूर्ति स्वीकृत हो जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत लग्जमबर्ग साझेदारी लगातार और मजबूत होती रहेगी। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया। ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे सुहाने सफर में स्वागत है आपका।

आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया आंदोलन फिल्म का ये गाना। शब्दकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।

0: आनंद बख्शी के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण के थी। ये गाना आपने सुना फिल्म मोहब्बत से।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है

0: उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। गीतों भरे सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है।

0: मैं हूं ना। आपने सुना इस फिल्म का गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अन्नू मलिक ने। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत खामोशी द म्यूजिकल फिल्म से। युगल स्वर है अलका याग्निक और हरिहरण का। इस गीत को रचा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन जतिन ललित का है।
1: हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म जीत सिंह। शब्दकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

और अब लीजिए कार्यक्रम के ये आखिर में सुनवाते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये शीर्षक गीत। आवाज़ लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की है। इस गीत को रचा है देव कोहली ने, संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का है।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए फिल्म हम आपके हैं कौन के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को

0: समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का।

コイル。नमस्कार, जमशेदपुर के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, तारीखों का भी अपना एक मिजाज होता है। कुछ तारीखें कैलेंडर में चुपचाप गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी गट्ठर लेकर आती हैं। आज 23 जून भी कुछ ऐसी ही तारीख है। आज कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऊर्जा की जो हमें सोफे से उठकर दौड़ने पर मजबूर करती है, या कम से कम टीवी पर दूसरों को दौड़ते हुए देख खुद को फिट महसूस कराने का भ्रम तो दे ही देती है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का। इसकी शुरुआत साल 1948 में हुई थी। 23 जून 1894 को पेरिस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी गई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का गठन हुआ था। ऐसी ऐतिहासिक दिन को याद करने और दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जाति, लिंग या उम्र के भेदभाव के बिना हर व्यक्ति को खेलों से जोड़ना है। इस साल की थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो चलें और जश्न मनाएं। ये थीम हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में ठहरना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना ही असली खेल है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज़ में चांदनी चौक टू चाइना फिल्म का ये गीत, और हम बात कर रहे थे खेलों की। खेलों के फ़ायदे अगर हम गिनाने बैठे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो है ही, पर समाज पर भी इसका एक बड़ा असर है एकता का। जब किसी खेल के मैदान पर देश के खिलाड़ी देश की जर्सी पहनकर उतरते हैं तो पूरा देश एक सुर में धड़कता है। खेल हमें हारना और हार कर फिर से उठना सिखाते हैं, जो कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल खेलों में हम ये भी देख रहे हैं कि इसका अत्यधिक व्यवसायीकरण हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मन पर एक बुरा प्रभाव भी बनाता है। इसके अलावा बच्चों पर जीत का दबाव इतना होता है कि खेल का आनंद ही गायब हो जाता है। साथ ही डोपिंग जैसे चीज़ें भी खेल भावना को चोट पहुंचाती हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खेल सेहत के लिए है, तनाव के लिए नहीं।

श्रोताओं, इस जोश भरे गीत के बाद अब रुख करते हैं उस समाज के रीढ़ की हड्डी की तरफ, जिसके बिना हमारा समाज, हमारा देश एक भी दिन नहीं चल सकता। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी पब्लिक सर्विस डे की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में प्रस्तावित पारित कर 23 जून को इस दिन के रूप में घोषित किया था। यह दिन उन सभी लोक सेवकों को समर्पित है जो दिन रात धूप छांव की परवाह किए बिना समाज की सेवा में जुटे रहते हैं, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो या पुलिस बल। इसका उद्देश्य है विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को पहचानना और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। इस वर्ष की थीम है सतत भविष्य के लिए लोक सेवा में नवाचार। श्रोताओं, लोक सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियां और मदद पहुंचाती है। एक कुशल लोक सेवा ही किसी भी देश के सुशासन की पहचान होती है। समाज में जब भी कोई आपदा आती है तो यही लोक सेवा सबसे पहले ढाल बनकर खड़े रहते हैं। जिंदगी के हर पहलू में कभी ना कभी हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। अक्सर लोक सेवा का नाम आते ही लोग कहीं ना कहीं सुस्ती और भ्रष्टाचार की तस्वीर अपने मन में उभार लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। डिजिटल इंडिया और तकनीक के आने से अब चीजें बदल रही हैं, पारदर्शिता इस फील्ड में भी आ रही है।

श्रेया घोषाल, रुक कुमार राठौड़ और सुजैन डी मेलो की आवाज में अभी आपने सुना वीर फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं समाज के ऐसे सोच की जिसे थोड़ा साफ करने की जरूरत है। आज है 23 जून और आज हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। इस दिन की शुरुआत लंबा फाउंडेशन द्वारा 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में करोड़ों विधवा महिलाओं की गरीबी, अन्याय और उनके अधिकारों के हनन की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इस साल की का थीम है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। हमारे समाज में आज भी कई जगहों पर विधवा महिलाओं को अपशकुन माना जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें मांगलिक कार्यों से दूर रखा जाता है, यह मानसिक क्रूरता है। साथ ही साथ उन्हें सामाजिक रूप से भी अलग थलग कर दिया जाता है, संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि समाज को अंदर तक झकझोरने की जरूरत है। आज कानून बदल रहे हैं, समाज की सोच बदल रही है, पुनर्विवाह को स्वीकार किया जा रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। समाज में इसका सकारात्मक असर तब दिखेगा जब हम उन्हें दया की नजर से नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी की नजर से देखेंगे। हमारे समाज की वंचित महिलाओं को ये बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भर बनाएं।

श्रोताओं, आज का ये दिन, ये तारीख अपने अंदर न जाने कितनी ही विशेषताएं समेटे हुए हमें ये सिखाता है कि जीवन बहुआयामी है। इसमें अनुशासन भी है, सेवा भी है और करुणा भी। अगर हो सके तो आज किसी खेल में हिस्सा जरूर लीजिए या फिर किसी लोक सेवक के अच्छे काम की सराहना कीजिए और अपने आसपास किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर कीजिए। कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आगे भी जारी रहेगा दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे फिल्मी जगत की। आज हम उस शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने दमदार आवाज, लाजवाब अभिनय से 70 और 80 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे सधे हुए और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक, राज बब्बर की। राज बब्बर जी ने जहां एक तरफ संजीदा और गंभीर किरदार निभाए, वहीं दूसरी तरफ जब भी वे पर्दे पर रोमांस करते थे वो दिल की धड़कनें बढ़ाया करते थे। राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखकर जब वे मुंबई गए तो उन्होंने सीधे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों से जहां उन्होंने अपने अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया, वहीं निकाह, आज की आवाज़ और प्रेम गीत जैसी फिल्मों ने उन्हें एक स्टार बनाया। उन्होंने हर किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि वो किरदार अमर हो गए।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्रेम गीत फिल्म का ये गीत। और ये गीत कहीं ना कहीं वक्त की सीमाओं से परे सा लगता है। राज बब्बर जी की फिल्मों की एक और खासियत थी उनकी फिल्मों के संवाद और उनमें छुपी शायरी। उनकी आवाज़ का भारीपन और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज कुछ ऐसा था कि थिएटर तालियों से गूंज उठता था। अभिनय के बाद उन्होंने राजनीति के मंच पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन सिनेमा के शौकीनों के लिए वो हमेशा हमारे पसंदीदा राज ही रहेंगे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। वे जहां रहे स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।

श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने 90s के आखिर और 2000 की शुरुआत में हर पार्टी, हर कॉलेज फेस्ट और हर वॉकमैन पर अपनी आवाज से गुलजार किया। ये ऐसे बॉलीवुड और इंडी पॉप इंडस्ट्री के वो रॉक स्टार हैं जिन्होंने गीतों को एक नए तरीके से, एक पश्चिमी टच के साथ प्रस्तुत किया। हम बात कर रहे हैं नीरज श्रीधर की। नीरज श्रीधर का जन्म 23 जून 1965 को जालंधर, पंजाब में हुआ था। हालांकि उनका जन्म पंजाब में हुआ, लेकिन उनका शुरुआती जीवन और परवरिश काफी अलग रही। जब वे लगभग 13-14 साल के थे, तब उनका परिवार विदेश शिफ्ट हो गया। उनकी स्कूली और आगे की पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा विदेश में ही पूरा हुआ। इसी वजह से उनकी बातचीत और गायकी के स्टाइल में एक पश्चिमी टच देखने को मिलता है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक, रॉक और पॉप को करीबी से समझा, और यही वजह है कि 1994 में उन्होंने विदेश में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मशहूर बैंड बॉम्बे वाइकिंग्स की शुरुआत की।

कंपोजर प्रीतम के साथ मिलकर नीरज जी ने ऐसा जादू बिखेरा, आवाज का वो जादू जिसे कभी कोई भूल नहीं सकता। फिल्म भूल भुलैया हो या किस्मत कनेक्शन, लव आजकल, हाउसफुल जैसे फिल्मों ने उन्होंने अपनी आवाज का लोहा मनवाया। उनकी आवाज में ऐसी फ्रेशनेस और वाइब थी जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। उनका स्टाइल सबसे जुदा, सिंपल, कैची और बेहद मेलोडियस था। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारी ओर से उन्हें ढेर सारी बधाई।

नीरज श्रीधर और तुलसी कुमार की आवाज में दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बिल्लू फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ आज का हमारा नमस्कार जमशेदपुर का ये सफर यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत।

0: Good.
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 12 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी

0: अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 12:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम भावगीत का।

भावगीत के आज के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जब दिल को कोई अच्छा लगने लगता है तब एक ऐसा भी समय आता है जब दुनिया सो रही होती है और दिल जाग रहे होते हैं। वो दिल जिसे किसी की याद में धड़कते हैं, वो दिल जो मोहब्बत की कशिश को महसूस करते हैं। और कहते हैं ना कि मोहब्बत एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और सच कहूँ तो इसका इलाज कोई चाहता भी नहीं, क्योंकि मर्ज़े इश्क जिसे हो जाए

उसे दवा की जरूरत क्या, मर्ज़े इश्क जिसे हो जाए उसे दवा की जरूरत क्या, इसका इलाज तो बस दीदारे यार में है।

दोस्तों, लोग मरीज़े इश्क हो तो जाते हैं, लेकिन इस मर्ज का सबसे खूबसूरत पहलू जानते हैं क्या है? वो है चेहरे पर बेवजह आने वाली एक प्यारी सी मुस्कुराहट। जब भी कोई किसी के ख्यालों में खोया हो और अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ जाए, तो समझ जाना चाहिए कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि आपकी खुशी का जरिया बन जाता है। शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि तुम्हारे साथ मुस्कुराने की आदत सी हो गई है, अब तो हर दुआ में तुम्हारी इबादत सी हो गई है। तुम जो मिले हो तो लगता है ऐसा जैसे इस बेजान जिंदगी को जीने की वजह मिल गई है।

दोस्तों, मुस्कुराहटें तब और गहरी हो जाती हैं जब वो वजह हमेशा के लिए हमारे हम सफ़र हमारे हमनवा बन जाते हैं, वो हमनवा जिससे हम कुछ नहीं छुपाते, जिससे हम बस यही गुजारिश करते हैं कि रास्ते चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बस हमारा साथ न छोड़े, क्योंकि सफ़र खूबसूरत है अगर तुम हमनवा हो मेरे, मेरी हर धड़कन की सदा तुम हो। मांग लूं खुदा से तुम्हें अपनी हर सांस के लिए, क्योंकि मेरी तन्हाई की इकलौती साथी तुम हो।

दोस्तों, मोहब्बत जब हमनवा से होते हैं तब ये रूह तक पहुंचती है, और वो सिर्फ एक एहसास नहीं रहती, वो इश्क हकीकत बन जाती है, जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती, बस एक रूह का दूसरी से मिलन होता है, और दिल बस यही पुकारता है कि रूह से रूह का राब्ता है तुमसे, सिर्फ लफ्ज़ों का ये अफसाना नहीं, तुम बसे हो इस दिल में मेरे पिया, अब इस दिल का कोई और ठिकाना नहीं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा भावगीत का ये सफर यहीं तक। आज के इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया उनके नाम हैं जिद, युवराज, हमारी अधूरी कहानी और आजा नचले। आवाजें थी अरिजीत सिंह, अलका याग्निक, जावेद अली, पापोन और राहत फतेह अली खान की। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को दीजिए अब इजाजत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज में ख्याल गायन। राग आधारित होगा

अभी आपने सुना बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज में ख्याल गायन राग था देसी। अब आप सुनेंगे ठुमरी, राग होगा हिंडोली सारंग, आवाज है बड़े गुलाम अली खान।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज में ठुमरी, राग था हिंडोली सारंग। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का हमारा ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर का प्राइमरी चैनल एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण के तहत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम

0: तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात, दोनों राज्यों के वित्त प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक, अब अधिकतम दो ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन, केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक

0: दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन, एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की चार बेटियां सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिग्गज आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी। शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के विभाजन के बाद के बजटीय अनुभवों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने धनबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम लोगों तक पहुँचाया जाए।
2: प्रशासन का जो काम हो रहा है वो नियम के अनुसार हो रहा है या नियम का उल्लंघन करके हो रहा है, तो इस बारे में हम लोगों ने जनहित के कई नियम है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, जन सूचना अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में उन्होंने बात किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदाम में लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का नमक बर्बाद होने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में बेटियों को बचाने और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PC&PNDT एक्ट के तहत राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के तहत कोई भी चिकित्सक अब अधिकतम 2 ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आकाशवाणी के ताजातर समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार, एक सैंडल, ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज @Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। CIP रांची ने खूंटी जिले में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जोखिम प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ICSSR with the

0: घोषित इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है ताकि वे शुरुआती स्तर पर आत्महत्या के जोखिम की पहचान कर सकें। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक ई एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने छात्रों के इस उपयोगी नवाचार की सराहना की है।
1: दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेंटर फॉर ईवी व्हीकल्स, उसका यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स और बच्चों के जो अच्छे इनोवेशन था उसका एक कलेक्शन के साथ इसकी शुरुआत की गई और बहुत अच्छा देख के लगा कि कुछ अच्छे इनोवेशन का शुरुआत की गई।
0: रांची पुलिस के एसआईटी ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं।
2: रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग 3 जगह से ब्राउन शुगर रेड्स की गई हैं। उस टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र से 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। लगभग 18 ग्राम जो है ब्राउन शुगर रिकवर किया गया।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर आ गया, जबकि निफ्टी 90 अंक गिरकर 24,013 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए विभाग ने पलामू प्रमंडल सहित 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग से भारतीय सेना के गुरुलाल सिंह और महिला वर्ग से ममता कुमारी विजेता बनी। मुख्य अतिथि और पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने ओमान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों नीलम टोपनो, खोली कुमारी, सुगम सांगा, श्रुति कुमारी और उनकी कोच करुणा पूर्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PCNPNDT एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक। अब अधिकतम 2 ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन। केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन। एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की 4 बेटियां सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:20 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

फिल्म संगीत के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जीवन की इस आपाधापी में सुबह की चाय की चुस्की से लेकर रात के खाने की टेबल तक अगर कोई चीज़ हमारे साथ लगातार चलती है तो वो है हमारे रिश्ते, जो कभी जलेबी की तरह मीठे होते हैं तो कभी कभी उन्हीं रिश्तों में बिना बात के मिर्च मसाला भी तेज हो जाता है, या यूं कह लें कि गलत फहमियाँ ऐसे पनप जाती हैं जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो उस कड़वाहट को दूर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवन में सांस का, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं और उन रिश्तों का थोड़ा भी मनमुटाव हमारे मन मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ता है।

उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना रिश्ते फिल्म का ये गीत। अब्बास कटकर के लिखे गीत को संगीत दिया था संजीव दर्शन ने। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। जब भी हम किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, जीवन साथी की सिर्फ अच्छाइयां नजर आती है। लेकिन शादी एक ऐसा बंधन है जो कुछ महीने गुजरने के बाद या फिर रिश्ता थोड़ा पुराना हो जाए तो छोटी छोटी बातों पर ऊंच नीच हो जाने पर आवाज़ तेज कर बोलना या गुस्सा होना आम बात हो जाता है। और ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि सॉरी बोलकर उस गुस्से को ख़त्म किया जा सकता है, उस दुख को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हर बार सॉरी कहकर जो हुआ उसे भूल जाओ कहकर बात ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हर बार सिर्फ सॉरी कह देना काफ़ी नहीं है। आज कई रिश्तों में ये एक आम रवैया बनता जा रहा है, पहले गुस्सा, फिर बदसलूकी और बाद में माफ़ी। ये जो चक्र है बार बार चलता है तो सामने वाले को लगने लगता है कि उसका व्यवहार तो चल जाएगा और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा घुटन और मनमानी वाला बन सकता है, क्योंकि सॉरी से या सॉरी कहकर हर दुख को कम नहीं किया जा सकता।

जिगर सारिया की आवाज़ में अभी आपने सुना एनीबडी कैन डांस फिल्म का ये गीत। मयूर पुरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने।

दोस्तों, एक रिलेशनशिप में कई बार गुस्सा बहुत बड़ा आग में घी का काम करता है। तो जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो, परिस्थिति में हो कि आप गुस्सा हैं, तो उस स्थिति में बात बोलने के बजाय कुछ देर शांत रहने की कोशिश करें। मौन कई बार बहुत सारे होने वाले प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का भी एक काम करता है, क्योंकि गुस्से में बोली गई कोई भी बात सामने वाले को ज़्यादा दुख पहुंचा सकती है।

राघव चैतन्य की आवाज में अभी आपने सुना मेट्रो इन दिनों फिल्म का ये गीत। अनुराग शर्मा के लिखे गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। दोस्तों, एक रिलेशनशिप में जब दो जीवन साथी किसी भी तरह की गलती करते हैं तो इस बात का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि ये गलती दोबारा ना हो, क्योंकि कई बार सिर्फ माफी मांगकर किसी बात को खत्म कर देने से ये व्यवहार में सुधार नहीं दिखता, क्योंकि मौखिक माफी तभी मायने रखती है जब वो व्यवहार में बेहतरी लेकर आती है।

जैस्मिन सैंडल्स सतिंदर सरताज की आवाज में अभी आपने सुना धुरंधर द रिवेंज फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं सतिंदर सरताज और जैस्मिन, संगीतबद्ध किया शाश्वत सचदेव ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना मरजावा फिल्म का ये गीत। रश्मि विराग के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, कई बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश में इतने मशरूफ रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि थोड़े बदलाव की ज़रूरत खुद में भी है। तो समझदारी इसी में है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को आप वैसा नहीं बना सकते जैसा आपने सोचा था, तो इस हकीकत को स्वीकार करिए और हर बार सामने वाले को बदल कर उससे उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्शन के पीछे भागना एक बहुत बड़ी गलती है। तो ये कोशिश करिए कि परफेक्शन के बजाय एक दूसरे को फिट और एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद हो सकती है।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना केदारनाथ फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत बद्ध किया था अमित त्रिवेदी ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके ठीक बाद 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

0: श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
1: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
2: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
3: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
3: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
3: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है।

0: गीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस दिलकश गीत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना जंजीर फिल्म का ये गीत। गुलशन बावरा के लिखे गीत को संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जीने की राह फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना रज़िया सुल्तान फिल्म का ये गीत। जानिसार अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया था खयाम ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाज़त। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 2:55 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

क्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने एसआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आज नाफेड के नीलामी पोर्टल nafex.in का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। श्री शाह ने बताया कि हाल के वर्षों में नाफेड का मुनाफा बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का प्रयास खेत से

0: किसान के खाते तक सभी व्यवस्थाओं को डिजिटल करने की ओर है। उन्होंने बिचौलियों पर अंकुश लगाने पर बल देते हुए दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया।
1: ये नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग की मंजूरी दी है। हजारीबाग के सोहराय कला के बाद अब डोकरा आर्ट को भी जीआई टैग मिला है। डोकरा आर्ट के पर्यवेक्षक शिशुपाल चंदेलिया ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
1: लाभ तो आर्टिजन को होना ही होना है, जाहिर सी बात है कि जब जीआई टैग मिल गया तो देश विदेशों तक हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी। आर्टिजन को लग रहा है कि नहीं, हाँ अब जीआई टैग मिल गया है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारा डिमांड आएगी तो न और हमें ज्यादा आई होगी उसकी, डोकरा क्राफ्ट और ऊपर जाएगा।
0: सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से एक डकैती मामले में फरार चल रहा था। थाना प्रभारी विनोद मुर्मू ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देवघर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से करीब 1.5 किलोग्राम गांजा, दोपहिया वाहन और मोबाइल बरामद किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले रोशन थापा को लोक भवन में सम्मानित किया। रोशन थापा ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में परंपरागत व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया था। लोक भवन में उन्हें सम्मानित कर राज्यपाल ने उनका उत्साह वर्धन किया। इस दौरान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बज रहे हैं श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना।

है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे, तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में
उनकी महत्वपूर्ण

0: भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ ब्रांच के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? है
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

तेरी तो बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे, तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपनी कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
4: चलो चलो
3: चलो,
4: हाँ
3: जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
0: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीरा कोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत हुसैन खान का ठुमरी गायन, राग था होरी। इसी के साथ सुगम संगीत का आज का हमारा ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर का प्राइमरी चैनल FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:45 हुए हैं, समय है कार्यक्रम लोकगीत का।

कार्यक्रम लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भोजपुरी लोकगीत से। कलाकार है संतराज सिंह रागेश और साथी।

0: थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे संतराज सिंह रागेश और साथी। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम लोकगीत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। दिशोम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति से इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में BLO और BLO प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 36 घंटों के दौरान जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSEA स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। अगला कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

फिल्म संगीत के आज के संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत। श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

सुनिधि चौहान की आवाज में अभी आपने सुना धूम 3 फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना वॉर फिल्म का ये गीत। कुमार के लिखे गीत को संगीत में पिरोया था विशाल शेखर ने।

सचेत टंडन की आवाज में अभी आपने सुना विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का ये गीत। प्रिया सारिया के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने।

नेहा कक्कड़ शेखर की आवाज़ में अभी आपने सुना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का ये गीत। कुमार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने।

दलजीत दोसांझ, सुखबीर और ध्वनि भानुशाली की आवाज़ में अभी आपने सुना गुड न्यूज़ फिल्म का ये गीत। कुमार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था सुखबीर और चेतस ने।

आस्था गिल, दिव्या कुमार, सचिन जिगर की आवाज में अभी आपने सुना स्त्री फिल्म का ये गीत। वायु के लिखे गीत को संगीत दिया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

विशाल ददलानी, पायल देव, बादशाह और बीपराग की आवाज में अभी आपने सुना नमस्ते इंग्लैंड फिल्म का ये गीत। राकेश और बादशाह के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था ऋषि रिच और बादशाह ने। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत से अब दीजिए विदा।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का अगला गाना सुनिए इस फिल्म से।

शुभ संध्या साथियों, ये शाम ढल चुकी है, यहाँ मौसम बदल चुका है, बादल गरजने और बरसने लगे हैं। इस शाम के सुकून में इन ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ मैं सरितम आपका स्वागत करती हूँ आज के युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारी ये बड़ी सी लगने वाली छोटी सी जिंदगी के कितने आयाम होते हैं। सच कहूँ तो मैं मुख्यतः तीन आयामों को महत्वपूर्ण मानती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे करियर की। आज के युग में बहुत सारे युवा, आज हम ये सुन रहे हैं कि आजकल के युवा एम्प्लॉयबल और एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि उनके पास स्किल और अनुभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने युवाओं के लिए एक प्रमुख योजना लाई है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल

होटल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए लाई गई है। इस इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। यदि आप 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं, भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित हैं, किसी स्थायी नौकरी में नहीं है, किसी फुल टाइम एजुकेशन में नहीं है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में हैं, तो आप इसके लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं। आप इसकी पूरी जानकारी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। आप सेक्टर्स और फील्ड्स की पूरी लिस्ट प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर देख सकते हैं। यदि आप अपने शहर में या बाहर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो अपनी सुविधा और सुविधा के अनुसार अपना राज्य, जिला, सेक्टर और फील्ड चुन सकते हैं। इस योजना के तहत चुने गए इंटर्न को हर महीने 9,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, जिसका 90% सरकार देगी और 10% कंपनी। आप इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in या PM इंटर्नशिप स्कीम ऐप पर। इतने अच्छे योजना से मैं तो अपने करियर के लिए निश्चिंत सी हो गई हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जो हमें जिंदगी के मौकों को अपनाने का संदेश देती है।

0: आपने सुना ये खूबसूरत गीत आजकल जिंदगी फिल्म वेक अप सिड से, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लोय ने और आवाज थी शंकर महादेवन की।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, हम बात कर रहे थे अपने करियर की। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर, तो कोई इंजीनियर। लेकिन पदों तक पहुंचने के लिए हमें परीक्षा पास करनी होती है, दोनों ही, जीवन के भी और इनके भी। जब परीक्षा की चर्चा हो रही है तो जानते हैं कुछ आगामी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं को। जून 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट की परीक्षा है। यदि आप ने मास्टर्स किया है और सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्चर बनना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए है। जुलाई से सितंबर 2026

0: इसमें स्टेट सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल SSC HCL की परीक्षा है। इससे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर IBPS की परीक्षा अगस्त में, क्लर्क की अक्टूबर में, रीजनल रूरल ऑफिसर स्केल 1 IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 की परीक्षा नवंबर में है और सितंबर में नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी NDA और NA की परीक्षा है। इससे आप देश के किसी भी सेना में जाने का अवसर पाते हैं। साथियों, इन प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे कठिन चरण होती है इसकी तैयारी। तैयारी के दौरान छात्रों को अलग अलग वजह से मानसिक तनाव की समस्या होती है। कभी सिलेबस काफी ज्यादा होता है, कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, कभी अपने शहर में सही शिक्षक नहीं होते, घर परिवार से दूर रहो तो खाने पीने और पैसे की समस्या, कभी पीछे रह जाने की चिंता, कभी ना कर पाने का डर। अपनी इसी सफर के इसी हिस्से को साझा किया है हमारे साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सदानंद जी ने।
1: आपका नाम क्या है?
2: माय नेम इज सदानंद गोप।
1: ओके, और अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
2: राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, SSC, रेलवेज।
1: अभी आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे चल रही है आपकी तैयारी?
2: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है।
1: तब दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं अपने तैयारी के लिए?
2: इसका कोई फिक्स आवर्स नहीं है डेली के लिए, कभी 7 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 4 घंटा भी पढ़ते हैं, रेगुलर नहीं है ऐसा कुछ।
1: क्या आपका ये प्रिपरेशन टाइम आपको कभी भी स्ट्रेसफुल फील कराता है?
2: हमेशा स्ट्रेसफुल तो बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, फैमिली से है, सोशल से है, और जितने भी दोस्त फ्रेंड्स है उस सबसे है, तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर होता है, फील होता है।
1: जैसा आपने बताया कि बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फ्रेंड से होता है, फैमिली से होता है, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज लाइक ऐसा लगता है कि ये एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर दे रही है?
2: फैमिली प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन फैमिली से होता है उसका।
1: ओके, जब भी आप अपने स्टडीज से बर्न आउट फील करते हैं तो आप क्या करते हैं?
2: मैं अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लेता हूँ, या मैं अपने वैसे दोस्त से बात करता हूँ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, उस टाइप से बात कर लेता हूँ, और मैं अपना जो भी है जो वीक पॉइंट्स है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि क्यों मैं कम आ रहा है तो क्यों मार्क्स कम आ रहा है इस तरह।
1: जैसे आपने बोला कि फैमिली की तरफ से आपको सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को आप किस तरह से कॉम्बैट करते या किस तरीके से उससे उभरते हैं और वापस अपने प्रिपरेशन में कैसे फोकस करते हैं?
2: कुछ बोला जाता है कि टाइम ही सबसे बड़ा दवा होता है, तो मैं टाइम पर ही वो छोड़ देता हूँ और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है उसके बाद। और बहुत ज्यादा यदि वीक फील हो रहा है तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, फैमिली से थोड़ा बैठ के बात कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो बहुत इजी है, लेकिन वो फैमिली से और फ्रेंड से बात करके वो थोड़ा सा वो कम बैक कर लेता हूँ।
1: ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह ही बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं?
2: जी जरूर, मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन साथ में एक ही प्रिपरेशन ही मत रखिए, अपना एक साइड में भी रखिए कि साथ साथ उसके साथ पैरेलली दो चीज कर सके साथ में। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में क्लियर कर ही लोगे, उसके साथ रखे कि कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह का भी आप साथ में रखिए, ताकि आपको बाद में अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो आपके साथ रहेगा, आपके पास एक दो स्किल्स रहेगी तो आप हमेशा मतलब कमा पाओगे फ्यूचर में भी।
1: ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम ये दुआ करते हैं कि आप जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसमें जरूर क्वालिफाई करें और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। थैंक यू।
2: थैंक यू।
0: साथियों, माना कि मुश्किल है सफर, परंतु नामुमकिन नहीं। समस्या है तो समाधान भी है, और इन्हीं समाधानों की चर्चा की है हमने इस संवाद में।
3: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्वाति सिंह, एक अनुभवी मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट और नशा मुक्त विशेषज्ञ। आप बच्चों, किशोरों और वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, तनाव, एंजाइटी और नशे की लत को दूर करने के लिए परामर्श देती हैं।
4: नमस्कार, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज एक जरूरी विषय पर मुझे अपनी राय रखने का मौका दिया।
3: मैम, आज के कॉम्पिटिटिव दौर में युवा अक्सर मानसिक तनाव से जूझ पूछ रहे होते हैं। आप हमें बताएं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में किस तरह के बदलाव होने पर हम ये पहचान पाएंगे कि ये मानसिक रूप से तनाव में हैं।
4: अगर तैयारी कर रहे किसी छात्र में ये तीन मुख्य बदलाव दिखे तो समझना चाहिए कि उन्हें मदद की जरूरत है। सबसे

0: पहले तो व्यवहार और स्वभाव में बदलाव। जो बच्चा पहले शांत रहता था, वह अचानक अगर चिड़चिड़ा हो जाए, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगे या खुद को ही कमरे में बंद कर ले और सबसे अलग थलग रहने लगे, छोटी छोटी बात पर रोने लगे या बहुत ही चुपचाप रहने लगे, तो ये एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा दैनिक दिनचर्या या बच्चे के रूटीन का अचानक से बिगड़ जाना, जैसे कि देर रात तक जगना, बहुत ज्यादा सोना, भूख में कमी होना या बिल्कुल ना खाना, या फिर स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा खाना, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। साथ ही पढ़ाई और एकाग्रता में कमी, घंटों किताबों को लेकर बैठने पर भी कुछ याद ना होना, फोकस ना कर पाना और बात बात पर कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, ये सारे लक्षण तनाव के हो सकते हैं।
1: जी, मानसिक तनाव हमारे शरीर पर किस तरह से असर करता है?
0: हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब दिमाग में तनाव होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, यह हमारे शरीर पर कई तरह के असर डाल सकता है, शारीरिक दर्द, पेट की गड़बड़ी, घबराहट के लक्षण इत्यादि। देखिए, यदि कोई बिना किसी बीमारी के भी अक्सर सिर में भारीपन या दर्द की शिकायत कर रहा हो, गर्दन और कंधों में जकड़न होता हो, तो ये स्ट्रेस के वजह से हो सकता है। तनाव का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। पेट में गैस बनना, एसिडिटी या बार बार पेट खराब होना भी स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। दिल की धड़कन का अचानक से बढ़ जाना, हाथ पैरों में कंपन होना, ठंडे पसीने आना या हर वक्त थकान महसूस करना, ये सभी तनाव के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए तनाव का हमारे शरीर पर काफी ज्यादा असर होता है, इन लक्षणों से आप वो समझ सकते हैं।
1: हाँ, यदि ऐसी बात है तो युवा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे क्या बदलाव करें कि वो इन मानसिक तनाव से डील कर पाए?
0: तनाव से निपटने के लिए युवाओं को अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले तो नींद से समझौता नहीं करना, रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बेहद जरूरी है। सोते समय दिमाग खुद को रिपेयर करता है, साथ ही इससे याददाश्त भी बढ़ती है। नो स्क्रीन टाइम, पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया और रील्स देखने का समय तय करें। रात को सोने से कम आधा घंटा पहले फोन को खुद से दूर रख ले और किसी भी प्रकार का स्क्रीन ना यूज करें। शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी, जरूरी है कि दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट का वॉक करें, दौड़े या अपनी पसंद का कोई भी खेल खेले, इससे दिमाग में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सही डाइट और ब्रेक, बच्चों को चाहिए कि लगातार 4-5 घंटे ना पढ़ें, हर एक घंटे में 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें और चाय कॉफी की जगह पानी और हेल्दी स्नैक्स लें। आंखें बंद करें और आंखों को भी आराम दें, साथ ही थोड़ा टहले जिससे कि शरीर में भी चुस्ती आती है।
1: जी, ये तो हुई रोजमर्रा के बदलावों की बात, लेकिन अगर कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस फील कर रहा है और वो तुरंत बेहतर महसूस करना चाहता है तो वो क्या करें?
0: अगर कभी अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या घबराहट होने लगे तो तुरंत राहत के लिए ये तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो गहरी सांस लें। लंबे टाइम तक गहरी सांस लेने से दिल की

0: टेक्निक, जिसे हम 5-4-3-2-1 टेक्निक भी कहते हैं, इसे अपने आसपास देखें और 5 ऐसी चीजें ढूंढें जिन्हें हम देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, 3 चीजें जिनकी आवाज सुन सकते हैं, 2 जिनकी खुशबू ले सकते हैं और 1 जिसका स्वाद ले सकते हैं। ये सब करने से दिमाग का ध्यान स्ट्रेस से हट जाता है। आखिरी में मन की बात कहें, किसी भी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को फोन लगाएं और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। आप डायरी लिखकर भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। इन चीजों से स्ट्रेस में कमी हो जाती है।
1: मैम, जिंदगी में कुछ ना कुछ कारण से हम परेशान रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि ये बीमारी का कारण भी बन जाती है। ऐसे में कौन से लक्षण हैं जिनके होने पर हमें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए?
0: देखिए, तनाव और परेशानी नॉर्मल है, लेकिन यदि यह परेशानी 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार बनी रहे और आपके रोज के काम को प्रभावित करने लगे तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। ये लक्षण जिसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, ये एक तरह का इंडिकेटर हो सकता है कि अब आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। सबसे पहले तो लगातार उदासी बनी रहना। अगर बिना किसी खास वजह के हर रोज हर वक्त रोना आए या मन उदास रहे, जिन चीजों को पहले करने में मजा आता था उनमें दिलचस्पी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, गंभीर पैनिक अटैक आए, जैसे बैठे बैठे दम घुटना, छाती में दर्द होना या ऐसा लगना कि अभी कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, नींद और भूख का पूरी तरह खो जाना, कई दिनों तक रात रात भर नींद ना आना, नकारात्मक विचार आना, मन में यह ख्याल आना कि मेरी जिंदगी अब बेकार है, या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आना, सुसाइड करने का विचार आना, ये सारे ही लक्षण रेड फ्लैग्स हैं जिनके होने से आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
1: धन्यवाद डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ही संवेदनशीलता से हमारे श्रोताओं को विषय पर जागरूक किया। दोस्तों, आज का ये सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात तक, तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।

0: युव वाणी, ये था युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। कार्यक्रम कल कारखाने आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, 24 जून 2026 यानी बुधवार को रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत आप सुन सकते हैं यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रीत सिंह को। अपने समस्याओं के समाधान के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0657-2960-445 पर।
0: प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

दोस्तों, बारिश की फुहारें, मिट्टी की खुशबू और मौसम का बदलना प्रकृति के द्वारा दिया गया वो खूबसूरत पल है जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं और खुश होते हैं। जैसे तपती धरती पर बारिश की पहली फुहारें नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर आती हैं, वैसे ही आज का हमारा ये कार्यक्रम हम सभी के जीवन में उत्साह और प्रेरणा की एक नई बौछार लेकर आए। आज के इस शो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अंशु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। लोक सेवा को राष्ट्र के विकास की रीढ़ माना जाता है।

0: जरा सोचिए दोस्तों, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारे देश को सीधे खड़े रखने और आगे बढ़ने के लिए एक रीढ़ की हड्डी काम करती है, जिसे हम कहते हैं लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस। इस खास दिन के अवसर पर आइए आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं। लोकतंत्र में लोक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर जानकारी दे रहे हैं बसंत कुमार मंडल।
1: लोकतंत्र में सिविल सेवाएं प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में तथा देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोकतंत्र एक समतावादी सिद्धांत है, जिसमें शासित लोग अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुनते हैं। आधुनिक लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: विधानमंडल, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र। सिविल सेवा कार्यपालिका का एक हिस्सा है, जबकि मंत्री जो कार्यपालिका का हिस्सा हैं अस्थायी होते हैं और जनता द्वारा अपनी इच्छा से चुनाव के माध्यम से पुनः निर्वाचित या प्रतिस्थापित किए जाते हैं। सिविल सेवा कार्यपालिका का अस्थायी हिस्सा होते हैं। सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार सिविल सेवा सरकार के अधीन एक उप विभाग है। सिविल सेवाओं में कार्यरत अधिकारी विभिन्न सरकारी विभागों के अस्थायी कर्मचारी होते हैं। वे मूलतः कुशल प्रशासक हैं। इन्हें कभी कभी नौकरशाही या सार्वजनिक सेवा भी कहा जाता है। सिविल सेवाओं का ऐतिहासिक विकास। भारत में व्यवस्थित सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली का विचार प्राचीन काल से ही मौजूद है। मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष और अन्य पदों पर सिविल सेवक नियुक्त किए जाते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि सिविल सेवकों की भर्ती योग्यता और उत्कृष्टता के आधार पर की जाती थी और उनकी जांच पद्धति बहुत कठोर थी। मुगल काल में राज्य के अधिकारी होते थे जो भू राजस्व प्रणाली की देखरेख करते थे। आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने वाणिज्यिक कार्यों को संचालित करने के लिए एक सिविल सेवा थी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने सिविल सेवाओं की स्थापना मुख्य रूप से अपने भारतीय उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से की थी। सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता, भारतीय इतिहास और पूर्वी भाषाएं आदि सिखाई जाती थीं। लंदन के पास हर्डफोर्डशायर में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना सिविल सेवा के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। स्वतंत्रता के बाद में भारत में सिविल सेवा का पुनर्गठन किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान कानून और व्यवस्था को लागू करना और राजस्व का संग्रह करना सिविल सेवा अधिकारियों की प्रमुख चिंताएं थी। स्वतंत्रता के बाद जब सरकार ने कल्याणकारी राज की भूमिका ग्रहण की, तो कल्याण और नियोजित विकास की राष्ट्रीय और राजनीतियों को लागू करने में सिविल सेवाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली। सिविल सेवाओं का महत्व। सिविल सेवा पूरे भारत में मौजूद है और इसलिए इसका एक मजबूत बाध्यकारी चरित्र है। यह प्रभावी नीति निर्माण और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के राजनीतिक नेतृत्व को राजनीतिक और स्थिरता के बीच भी निष्पक्ष सलाह प्रदान करता है। यह सेवा शासन की विभिन्न संस्थाओं के बीच और साथ ही विभिन्न विभागों, निकायों आदि के बीच प्रभावी समन्वय प्रदान करती है। यह प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सेवा वितरण और नेतृत्व प्रदान करती है। सिविल सेवाओं के कार्य। सरकार का आधार। प्रशासनिक तंत्र के बिना कोई सरकार नहीं हो सकती। कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन। सिविल सेवाएं सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। नीति निर्धारण। नीति निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी भी सिविल सेवा की होती है। सिविल सेवा अधिकारी इस संबंध में मंत्रियों को सलाह देते हैं और उन्हें तथ्य और विचार भी प्रदान करते हैं।

स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति। राजनीतिक और स्थिरता के बीच सिविल सेवा स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करती है। सरकारें और मंत्री भले ही आते जाते रहें, लेकिन सिविल सेवा एक अस्थायी इकाई है जो प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिरता और निरंतरता का एहसास दिलाती है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के साधन। सफल नीति कार्यान्वयन से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। किसी भी योजना को तभी सफल माना जा सकता है जब वादे के अनुसार वस्तुएं और सेवाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। योजनाओं और नीतियों को साकार करने का दायित्व सिविल सेवा अधिकारियों का होता है। कल्याणकारी सेवाएं। ये सेवाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी उन्मूलन आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करती हैं। विकासात्मक कार्य। ये सेवाएं कृषि में आधुनिक तकनीकों का बढ़ावा देने, उद्योग व्यापार बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देने, डिजिटल विभाजन को पाटने आदि जैसे विभिन्न विकासात्मक कार्य करती हैं। प्रशासनिक न्याय निर्णय। सिविल सेवाएं न्यायाधिकरणों आदि के रूप में राज्य और नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करके अर्ध न्यायिक सेवाएं भी प्रदान करती हैं। सिविल सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 53 और 154 के अनुसार संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल में प्रत्यक्ष रूप से है या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निहित होती है। ये अधिकारी अस्थायी सिविल सेवा का गठन करते हैं और संविधान के भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 323 द्वारा शासित होते हैं। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन नागरिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। सिविल सेवक की जवाबदेही। सरकारी कर्मचारी अपने विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री संसद या राज्य विधानसभाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। आदर्श रूप से उन्हें तत्कालीन निर्वाचित सरकार की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नीतियां बनाना सरकारी सेवाओं का कार्य है। हालांकि एक निष्पक्ष सरकारी कर्मचारी भारत के संविधान के प्रति भी जवाबदेह होता है जिसके प्रति उसने निष्ठा की शपथ ली है। भारत में लोकतंत्र के बारे में प्रमुख तथ्य। भारत में लोकतंत्र एक संघीय गणराज्य है। भारत में लोकतंत्र में राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करते हैं। केंद्र स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली है। यह एक सार्वभौमिक व्यस्क फ्रेंचाइज है। सिविल सेवकों को कामकाज में सुधार के लिए उठाए गए कदम। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी। इसका उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत, प्रक्रियात्मक स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र को रूपांतरित करना है। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करता है। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक। इसे क्षमता निर्माण आयोग द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं CTI के प्रशिक्षण वितरण की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। आरंभ भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए पहला साझा आधारभूत पाठ्यक्रम है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति। नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी, पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवकों का विकास करना। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। पार्श्व प्रवेश योजना। विशेषज्ञतापूर्ण कौशल प्रदान करने और अनुभव में विविधता लाने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। आज सिविल सेवाओं को प्रभावित करने वाली समस्याएं। पेशेवर रवैये की कमी और क्षमता निर्माण का कमजोर होना एक अप्रभावी

0: प्रोत्साहन प्रणाली जो मेधावी और ईमानदार सिविल सेवकों को पुरस्कृत नहीं करती है, कठोर और अप्रचलित नियम और प्रक्रियाएं जो सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत निर्णय लेने और कुशलतापूर्वक कार्य करने की अनुमति नहीं देती हैं, नैतिकता और मूल्यों में गिरावट आई है जिसके कारण व्यापक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैला है।
1: लोकतंत्र में लोक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका, इस विषय पर अभी आप जानकारी ले रहे थे बसंत कुमार मंडल से।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फूल और कांटे में। गीत लिखा था रानी मलिक ने और संगीत नदीम श्रवण का था।

श्रोताओं, हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी, सामाजिक कलंक और अन्याय के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ से अधिक विधवाएं हैं, जिनमें से कई गंभीर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक तंगी का शिकार हैं। इस दिन का मुख्य फोकस इन पहलुओं पर है। विधवाओं के साथ होने वाले भेदभाव और संपत्ति विवादों के खिलाफ आवाज उठाना, उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आप सनम फिल्म के इस गीत को सुन रहे थे। बोल थे समीर के और संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का था। श्रोता साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है जो बेटियों की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस योजना के तहत 8.2% का वार्षिक ब्याज मिलता है। श्रोता, इस योजना के मुख्य बिंदु पर बात करें तो सबसे पहले बात आती है खाता खोलने की पात्रता क्या है। दोस्तों, माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वां बच्चियों के मामले में ये 3 का भी प्रावधान है। इस खाता में आप वित्तीय वर्ष न्यूनतम 250 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। निवेश की अवधि 15 वर्ष की है।

श्रोतो, खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक ही पैसा जमा करना होता है। मैच्योरिटी की बात करें तो 21 वर्षों के बाद मैच्योर होती है। बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने या 10वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का अधिकतम 50% तक निकाला जा सकता है। आयकर अधिनियम की 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट उपलब्ध है। श्रोताओं, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि आयकर से पूर्णतः मुक्त होती है।

कल कारखाने, ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर।

0: सभ्य किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बसेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा।

0: 124. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
2: इनके साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुरमाली लोकगीत से। कलाकार हैं वकील तांती और साथी।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे हैं कलाकार वकील तांती और साथियों की आवाज में कुरमाली लोकगीत।
1: चल भाजा जोनहारी भाजा, चल भाजा कालोई भाजा, उगती बोहारी आ चखनाटा, हमरा ती बोहारी।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार वकील तांती और साथियों की आवाज में कुरमाली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।

0: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, 24 जून 2026 यानी बुधवार को रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत आप सुन सकते हैं यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रीत सिंह को। अपने समस्याओं के समाधान के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0657-2960-445 पर।
0: प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। चर्चा का विषय है झारखंड में मछली पालन, वर्तमान में तालाब की तैयारी। जी हाँ श्रोता मित्रों, हमारे राज्य यानी झारखंड राज्य की बात करें तो मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी का सबसे सही समय मानसून से पहले का यानी मई जून का होता है। तालाब को सुखाकर वैज्ञानिक तरीकों से तालाब को तैयार करके मछली के बीज यानी जीरा डालने से पहले पानी की गुणवत्ता को सुधारा जाता है और प्राकृतिक भोजन तैयार किया जाता है। श्रोता मित्रों, तालाब की तैयारी की बात करें तो तालाब का पानी निकालकर तलहटी को कुछ दिनों तक धूप में सुखाया जाता है ताकि हानिकारक कीड़े मकौड़े और अवांछित मछलियां नष्ट हो जाएं। जलकुंभी और खरपतवार हटाना बेहद जरूरी होता है और अब तालाब में मौजूद अनावश्यक वनस्पतियों को पूरी तरह से साफ कर लिया जाता है। हमारे राज्य की मिट्टी मुख्य रूप से अम्लीय होती है, इसे सुधारने और पानी को क्षारीय बनाने के लिए लगभग 200 किलोग्राम कली चूना प्रति एकड़ डाला जाता है। किसान भाई बहनों, बीज डालने से 8-10 दिन पहले गोबर या सड़ी हुई खाद तालाब में डाली जाती है। इससे पलवक तैयार होते हैं जो मछलियों का प्राकृतिक भोजन होते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले मछली के बीज, जिसमें मुख्य रूप से रोहू, कतला, मृगल आदि शामिल है, उनके बीज तालाब में डाले जाते हैं। वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा राज्य के हर पंचायत में मॉडल तालाब बनाने और किसान भाई बहनों को आर्थिक सहायता के साथ 5 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत तालाब प्रबंधन, आहार व रोग नियंत्रण पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। श्रोता मित्रों, अगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो आप अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय या झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ के माध्यम से मत्स्य पालन से संबंधित लाभ उठा सकते हैं।

श्रोता मित्रों, और अब बात राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संबंध में। जी हां, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालन, मुर्गी पालन, चारा उत्पादन और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास करके किसान भाई बहनों की आय को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इतना ही नहीं, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, नस्ल सुधार और मांस, अंडा, ऊन एवं दूध का उत्पादन बढ़ाना भी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है। इस योजना के तहत लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 50% तक यानी अधिकतम 25 लाख से 50 लाख तक का पूंजीगत सब्सिडी दिया जाता है। ग्रामीण भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति, किसान, स्वयं सहायता समूह या कंपनी द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आप आवेदन आधिकारिक वेबसाइट उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण श्रोताओं, हमने सब्सिडी के विषय में बताया, यानी इस योजना के तहत उद्यमियों और किसानों को

फार्म स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और भारी सब्सिडी मिलती है। जैसे बकरी व भेड़ पालन में 100 मादा के साथ 5 नर से लेकर 500 मादा व 25 नर तक की इकाई पर अनुदान, सुकर पालन में 50 मादा के साथ 5 नर की इकाइयों की स्थापना, कुक्कुट मुर्गी पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अंडे व मांस उत्पादन के लिए पेरेंट्स फार्म और हैचरी की स्थापना, साइलेज बनाने और चारा ब्लॉक स्थापित करने जैसी इकाइयों के लिए सहायता प्रदान करना। आपको बता दें, हाल ही में इसमें घोड़ा पालन, ऊंट पालन व गधा पालन जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। किसान भाई बहनों, प्राकृतिक आपदाओं या बीमारियों से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए पशुओं का बीमा किया जाता है। इसके साथ ही किसानों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पर आवेदन के लिए कुछ शर्त भी हैं, जैसे आवेदक के पास मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान या पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट के अनुसार पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता होनी चाहिए।

0: और अब बात श्रोता मित्रों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नए भारत का निर्माण। जी हां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो नए भारत के निर्माण की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा से मिलाने का काम कर रही है। इसका मुख्य लक्ष्य बिना संपर्क वाले गांवों और बसावटों तक हर मौसम में चलने योग्य बारहमासी सड़कें पहुंचाना है। श्रोता मित्रों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों, कृषि बाजारों और शहरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। योजना के तहत देश भर में लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इसका लक्ष्य 25,000 नई बसावटों को सड़क से जोड़ना और 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार और तेज हो सके। ग्रामीण भाई बहनों, झारखंड जैसे राज्य के सुदूर और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस योजना ने मील का पत्थर साबित करते हुए आवागमन को आसान बनाया है, जिससे ग्रामीण स्वरोजगार, कृषि उपज की बिक्री और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सीधे तौर पर बाजार तक पहुंच मिल सके। और अब श्रोता मित्रों, रुख करते हैं भेंटवार्ता की ओर। जी हां, भेंटवार्ता के प्रथम प्रसारण में आज हम सुनेंगे वर्मी कंपोस्ट की जानकारी। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं श्री ददन सिंह और इनसे बातें कर रहे हैं विवेक आदित्य। तो चलिए सुनते हैं।
1: नमस्कार, कार्यक्रम कृषि जगत सुन रहे सभी किसान भाई बहनों को हमारा जोहार। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ददन सिंह जी, जो एक कृषि विशेषज्ञ हैं और यह पूर्व में टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्य भी कर चुके हैं। ददन सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, अब हम बातें करेंगे वर्मी कंपोस्ट की।
2: जी,
1: जाने ही अनजाने में कई बार हम आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, इससे जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, तो जो फसल को आहार के रूप में हम मानव या फिर पशु लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। इसीलिए आजकल जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट की चर्चा होती है। तो हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या है और ये रासायनिक खादों से अलग किस प्रकार है।
2: किसान भाई को ये पता होगा कि जिन खेतों में केंचुए ज्यादा रहते हैं
1: जी,
2: और उन खेतों का जो उपज शक्ति जो है वो ज्यादा होती है। जैसे हम लोग अभी बात किए गोबर की खाद की बात किए, हम लोग सरसों की, मूंगफली की खाद को, नीम की खाद को बात किए, उसमें किसान भाई को सबसे ज्यादा गोबर प्राप्त होता है, क्योंकि हर किसान भाई जानवर रखे हैं
1: जी,
2: कोई सब किसान भाई कोई ना कोई जानवर रखे हैं, यहाँ छोटी मोटी जानवर भी उन लोगों को बकरी हुआ, भेड़ हुआ, ये सब रखे हैं। तो उसके थ्रू जो है, जो डायरेक्ट जो है, जैसे गुड़ से चीनी हम लोग करते हैं, चीनी थोड़े से चीनी में हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, वैसे ही गोबर की खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है। पहले जो आता था स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर बनाने में खर्च होता,

0: थे। पक्का स्ट्रक्चर न बना करके अब किसान भाइयों के लिए बहुत ही सिंपल कृषि वैज्ञानिकों ने निकाला है कि जो जानवरों के लीटर होते हैं, जो जानवरों के मल मूत्र होते हैं, जो पुआल होते हैं, जानवरों के वेस्टेज जो होता है
1: जिसे किसान भाई बहन फेंक देते हैं,
0: बिल्कुल आप ठीक कहे, उनको सड़ाना है। और उसको सड़ाने के लिए जो है किसान भाई जो है अपना परत करके, जैसे एक लेयर गोबर दिया, एक लेयर जो सम फेंकते हैं लीटर उटर फेंकते हैं, पुआल फेंकते हैं, खाने होने के जो वस्तुएं फेंक देते हैं उसको एक लेयर, फिर गोबर, फिर लेयर, ऐसे करके दो तीन लेयर करके, और किसान भाई जो है एक 2.5 फीट बाई 6 फीट या 10 फीट अपने सुविधा के मुताबिक जितनी जगह उनको प्राप्त हो सके उसको, और थोड़ी ऊंची जगहों पर जहाँ की वाटर लगिंग ना हो, पानी लगने ना पाए, और उसमें केंचुआ जो है हम लोगों के केंद्रों से लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर के यूनिवर्सिटी से या कहीं से केंचुए लेकर के उसमें छोड़ देते हैं, और उसको जो है पॉलीथीन पैक से नहीं ढकना चाहिए क्योंकि उसमें हवा एरिफिकेशन होना चाहिए, हवा का संचार होना चाहिए, तब जाकर के करीब 60-70 दिनों में वो केंचुए खा करके और उसको खाद बना देते हैं। तो जो गोबर की खाद से 0.05 हम लोगों को नाइट्रोजन मिलता है, किसान भाई को समझना चाहिए, वही बर्मी कंपोस्ट से 1.5 मिलता है,
1: मतलब तीन गुना जी,
0: तीन गुना से भी ज्यादा कुछ हो जाएगा। और वैसे ही जैसे 1.5% आपके गोबर के खाद से पोटास मिलता है, तो केंचुए के खाद से 2% मिलता है, उसमें भी ज्यादा है। और 1.87 गोबर की खाद से मिलता है, तो केंचुए के खाद से 2% जो है के एमओपी मिलता है, एनपीके में जो हम बोलते हैं एमओपी मिलता है। तो केंचुओं की खाद किसान भाई डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, जमीन के उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, साथ ही खेत बचाओ अभियान जो सरकार की जो ये है उसको हम लोग उसकी उर्वरा शक्ति बचाएंगे तो मेरा खेत बच गया, खेत बचाओ अभियान में यही है। और उनको जो रासायनिक उर्वरक है उसको कम उपयोग करना पड़ेगा, और जमीन जो है कभी भी ऊसर लैंड नहीं होगी, जैसे कि उसमें हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोई पैदावार उपज करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसा बंजर जमीन जो आप बोलते हैं तो वो चीज नहीं हो सकती है, इसलिए केंचुए की खाद को किसान भाई को देना चाहिए।
1: जी, जैसा आपने बताया कि अगर वर्मी कंपोस्ट का हम प्रयोग करें या हमारे किसान भाई बहन उपयोग में लाते हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो उन्हें आर्थिक लागत में भी फायदा होगा,
0: बहुत बहुत फायदा होगा, आर्थिक लागत में भी फायदा होगा, उनको फर्टिलाइजर, उनको उर्वरक कम खरीदना पड़ेगा
1: जी,
0: और ज्यादा पैदावार होगी, स्वस्थ पैदावार होगी।
1: और अब जो और जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं, मलमूत्र होते हैं, उसका सही उपयोग होगा
0: वो तो फेंक देते हैं वो
1: जी,
0: तो उससे अच्छा उनको उपयोग होगा।
1: हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी दी ददन सिंह जी आपने। वर्मी कंपोस्ट क्यों आवश्यक है आज के रासायनिक खाद के उपयोग से बचने के लिए? अगर हम जैविक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट का अगर हम प्रयोग करें तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी और हमारे किसान भाई बहनों को आर्थिक लागत में फायदा भी होगा। और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके हम खेत बचाओ अभियान में अपनी भागीदारी भी निभा सकते हैं। ददन सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं जो किसान भाई बहन आपकी बातों को हमारे माध्यम से सुन रहे होंगे इसका लाभ उन्हें अवश्य ही मिलेगा,
0: जरूर मिलेगा
1: जी। किसान भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे हमारे स्टूडियो में आए ददन सिंह जी से, जो कि एक कृषि विशेषज्ञ हैं और पूर्व में टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कृषि पदाधिकारी के पद पे कार्य भी कर चुके हैं। और आज के इस बातचीत में हम लोगों ने बातचीत की है वर्मी कंपोस्ट बनाने की सही विधि क्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और ददन सिंह जी, आप जो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाई बहनों को ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: श्रोता मित्रों, वर्मी कंपोस्ट की जानकारी इस विषय पर सुन रहे थे भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण। भेंटवार्ताकार थे श्री ददन सिंह जी, और इनसे बातें कर रहे थे विवेक

ग्रामीण श्रोता मित्रों एक नजर डालते हैं मौसम संबंधी सूचना व सुझाव पर। जी हां, जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और इसके आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं हल्की धूप खिली रह सकती है तो कहीं घने काले बादल छाए रह सकते हैं। दोनों जिलों के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह या शाम के समय बहुत हल्की या हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान व बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवा चलने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 33 से 41 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रोता मित्रों, अगर हम कल के मौसम की बात करें यानी 24 जून के मौसम की, तो वर्षा 6.8 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 71% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 37% होने की संभावना है। हवा की दिशा होगी पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर तथा रफ्तार रहेगी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। श्रोता मित्रों, अगर धान की पौधशाला लग गई है तो बकानी रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडीजम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल कर छिड़काव करें। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट के साथ 0.25 चूने के घोल का छिड़काव अवश्य करें। इस मौसम में किसान भाई बहनों, मक्का फसल की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। संकर किस्में AH 421, AH 48 तथा उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4 बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। श्रोता मित्रों, यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है, अतः चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई आप कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा लोबिया की बुआई का भी यह उपयुक्त समय है। वर्षा पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि सब्जी नर्सरी, दलहनी फसलों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें तथा खड़ी फसलों व सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। यह समय मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई बहनों, पौधशाला में कीट अवरोधी नायलोन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसलों को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को कैप्टान के उपचार के बाद पौधशाला में बुआई करें। जिन किसान भाई बहनों की मिर्च, बैंगन, फूलगोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को ध्यान में रखते हुए रोपाई की तैयारी करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, सीताफल की पूसा विश्वास, पूसा विकास, तुरई की पूसा नसदार तथा खीरा की पूसा उदय, पूसा बरखा आदि किस्मों की बुआई आप कर सकते हैं। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत मेडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीटों, रोगाणुओं तथा खरपतवार के बीज आदि नष्ट हो जाएं। सड़ी गली गोबर की खाद का आधिकारिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांच के उपरांत उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करें। खास तौर पर पोटाश की मात्रा बढ़ाएं ताकि पानी की कमी के दौरान सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। वर्षा आधारित एवं बरानी क्षेत्रों में भूमि में नमी संचय के लिए पलवार का प्रयोग करना लाभदायक होगा।

श्रोता मित्रों, बात आशा योजना की। जी हाँ, पीएम आशा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान भाई बहनों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाना है। इसके तहत दालों और तिलहन जैसी फसलों की भारी गिरावट के समय राज्य सरकारों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा सीधे किसानों से उपज की खरीद की जाती है। यदि किसान भाई बहन अपनी फसल को बाजार में बेचते हैं और उन्हें एमएसपी से कम कीमत मिलती है, तो सरकार उस मूल्य के अंतर की

की भरपाई सीधे किसान भाई बहनों के बैंक खाते में करती है। इसके अंतर्गत चुनिंदा जिलों में निजी क्षेत्रों में भी फसल खरीदने की अनुमति दी जाती है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। श्रोता मित्रों, यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसान भाई बहनों को अपनी उपज का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो। अगर आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो खराब बाजार स्थितियों में किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने से रोका जाता है।

कृषि जगत। ये था ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आज कल।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। एसआईआर वोटर मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में बीएलओ प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि, कहा प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत रांची सेल में क्षमता संवर्धन सम्मेलन, कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने में मंथन, विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन, यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च पुरस्कार दिशोम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडे में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने कहा कि एसआईआर में एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम नहीं कटेगा।
1: ट्रेनिंग में सभी बिंदु पर बात हो रही है, यहाँ पर अभी बीएलओ पूरा तरफ से जानकारी ले रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक भी भारत का नागरिक छूटेगा नहीं, सबको अपने शामिल कर देंगे। उसका साथ साथ में कितना भी पहले से गलत प्रवेशी है, फिर उसके बाद कितना भी गैर भारत नागरिक का नाम है, वो अपने रिमूव करके उनका पूरी काम करे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में एक समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को नई दिशा दी है, उनके कार्यकाल में जन कल्याण के कामों को भी नया आयाम मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने विकसित राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी पर जोर दिया। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ. मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बदलाव दिख रहा है।
2: आज उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर सैकड़ों लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया, और जो उनका सपना था, जो उनका सोच था कि एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, और इसी मूल मंत्र को लेकर अनेक प्रकार का आंदोलन करने का काम सदैव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करने का काम किया।
0: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलगी वन क्षेत्र में करीब 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को वन विभाग ने अवैध कब्जा से मुक्त कराया है। इस संबंध में गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी अनवर बिलाल अहमद ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से वन क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटकर अवैध कब्जा करते हुए खेती कर रहे थे।
3: सर्वे जब हम लोगों ने किया तो पाया कि करीब 20+ एकर्स में इंक्रोचमेंट लैंड था। वहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे खेती कर रहे थे। इंक्रोचमेंट ग्राम सभा बुलाया, मीटिंग हुई, तो लोगों ने वॉलंटरली एग्री किया कि वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे, और पूरे इंक्रोचमेंट को क्षेत्र को खाली कराया गया। ट्रेंचेस बनाए गए, कंटूर्स बनाए गए, गली प्लग्स किया गया, पिट्स बनाए गए।
0: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ में आज बोकारो की एक लापता युवती के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान जंगल से बरामद कंकाल और युवती के माता पिता के डीएनए रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @ AIR

0: और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में आज से मिशन कर्मयोगी के तहत 3 दिवसीय कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में सेल से संबंधित देश भर के प्रतिष्ठानों के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी और मैनेजमेंट गुरु कर्मचारियों को दक्ष और निपुण बनाने की दिशा में मंथन कर रहे हैं। मौके पर भारत सरकार की सदस्य डॉ. अलका मित्तल ने विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
1: 3 साल से ये एक्टिविटी चल रही है और इस संदर्भ में चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स की। हमारे कोई भी असेट फेल हो जाएंगे अगर ह्यूमन असेट जो है वो इक्विप नहीं होगा इन हमारे कैपिटल को संभालने के लिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने के कारण हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। कम वर्षा के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए जिले की कंटेंजेंसी प्लान बना लिए गए हैं। वहाँ की जलवायु, फसल उपलब्ध जल और जोखिम को देखकर कैसे हम वैकल्पिक खेती की योजना बनाई है।
0: इधर देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ और क्षेत्रों में आज मॉनसून प्रवेश कर गया। अगले 3-4 दिनों में इसके बाकी इलाकों में भी दस्तक देने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला के भरनों में राज्य में सर्वाधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक राज्य में 29 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की ओर से रांची में आज रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का आयोजन किया गया। पुराना विधानसभा से धुरवा गोल चक्कर होते हुए वापस पुराना विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों, युवा खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर पूर्व ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानस डुंगडुंग को सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया ने आगामी यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। झारखंड की 5 बेटियों पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी को महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। पुरुष वर्ग में प्रशिक्षण कैंप के लिए आशीष तानीपूर्ति का चयन हुआ है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटानागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। SIR वोटिंग मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में BLO प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत सेल रांची में क्षमता संवर्धन सम्मेलन, कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने का मंथन, विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हेरोइन कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक

0: युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर दिमाग परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अगुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन सेवन तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अगुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिब की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: झारखंड राज्य का एकमात्र जिला साहिबगंज जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है, इसके आसपास के किसानों को उपजाऊ मिट्टी के साथ यह राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की पसंदीदा शरण स्थली भी है।
2: जो डॉल्फिन सर्वे हुआ था, पहला रेंज वाइड सर्वे 2 साल पहले उसका रिपोर्ट भी रिलीज हुआ है, उसमें झारखंड में डॉल्फिन की प्रेजेंस बहुत अच्छी है। डॉल्फिन का एनकाउंटर रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। एनकाउंटर रेट का मतलब 1 किलोमीटर में कितनी डॉल्फिन दिख रही है, तो डॉल्फिन का कितना प्रेजेंस है वो झारखंड के इस इलाके में बहुत ही अच्छा है। उसके लिए कॉन्जर्वेशन के लिए जितना एफर्ट झारखंड सरकार ले रही है, जितना एफर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रही है, हम लोग रिसर्च के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पे डॉल्फिन सेंटर या फिर डॉल्फिन रेस्क्यू सेंटर का कुछ प्लानिंग अगर हम कर पाए, उसके लिए डीएफओ साहब से और WII देहरादून कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है।
1: भारत सरकार के दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए खरीफ और रबी के समय में अलग अलग किस्मों के दलहन बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना के आधार बीज उत्पादन करने वाले किसानों को 1800 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक अनुदान दिया जाएगा।
3: धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इन प्रोसेस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत खरीफ सीजन में अरहर, उड़द और मूंग का जो बीज उत्पादन है उसका कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी तरह से रबी सीजन में चना और मसूर का बीज का उत्पादन इस योजना के तहत प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाएगा और प्रमाणित बीज उत्पादन के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जैसे अरहर में उन्हें प्रोत्साहन राशि 4500 रुपए है, उसी प्रकार से उड़द, मूंग और मसूर में यह राशि 3000 रुपए प्रति क्विंटल है। यह कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो दलहन का खपत जो बड़े पैमाने पर हमारे देश में है उसमें हम लोग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
1: भारतीय किसानों को खेती कार्यों में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में खेत बचाओ अभियान के तहत साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में किसानों को भारत सरकार की कृषि का ऐप के माध्यम से खेती के लिए KCC इत्यादि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने बताया,
4: अभी चल रहा है खेत बचाओ अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल जो युग है उसमें यदि आप कृषि का ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में। साथ में खेती में यदि उर्वरक रासायनिक उर्वरक की उपयोग कम करते हैं तो खेती के स्वास्थ्य की जो है वो उसकी भी संभावना रहती है ज्यादा से ज्यादा अच्छी होने की।
1: हुल क्रांति के पुरोधा सिद्धू कान्हू मुर्मू की शहादत के उपलक्ष्य में साहिबगंज के पंचकठिया और शहीदों की जन्मस्थली भोगनाडीह में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। गत वर्ष भोगनाडीह में प्रशासन और जनता के बीच झड़प भी हुई थी। बहरहाल जिला प्रशासन हुल दिवस की तैयारियों में जुट गया है, जहां शहीद के परिजनों के बीच परिसंपत्ति का वितरण और विकास स्टॉल भी लगाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: ये था बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम।
1: श्रोताओं 24 जून 2026 यानी बुधवार को रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत आप सुन सकते हैं यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रीत सिंह को। अपने समस्याओं के समाधान के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0657-2960-445 पर।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक ग्राम विकास कार्यक्रम आलोक।
2: आलोक
3: ग्रामीण श्रोता मित्रों को जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं शशांक शेखर।
4: फिलहाल मैं हूं सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत ईशागढ़ प्रखंड के एक डूब क्षेत्र में। चांडिल बांध का डूब क्षेत्र है, ये गांव है हुल्लुंग, पंचायत पड़ता है बांदू। क्या स्थिति है यहां पर लोगों की वर्तमान समय में, ये जानने की हम कोशिश करने के लिए इधर आए हैं, जानना चाहते हैं। इस क्रम में हम यहां पर कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी हम बात करते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका?
5: वर्णशमा जी।
4: आपकी उम्र क्या होगी?
5: 60-65।
4: इसका मतलब जो डैम जब बन रहा था आपको अच्छा तरह से याद है?
5: हाँ।
4: इतने साल हो गए, हमको लगता है कि 80 का दशक था, है ना?
5: मैं हमारे सेटल एक माने पेंशन है सर।
4: माने को बसर हुई लो पेंशन पावा?
5: होलो आज कम से कम मोटा मोटी 15-20 नहीं होलो तो माने 8-10 वर्ष और कम हो गए।
4: ये तो डूब क्षेत्र है हुल्लुंग, तो आप लोगों का अभी क्या स्थिति है? सब आप लोगों को मुआवजा, जो डैम में आपका जमीन सब गई है, डूबी है, तो आप लोगों को पैसा मिला है? सब
5: मिले किंतु ये कम जम मिले एक को तो सच न को तो है।
4: बहुत पहले मिला ना?
5: हाँ, हाँ,
4: इसलिए
5: हाँ,
4: रेट कम था उस समय। हाँ, हाँ, और उस रेट पे मिला। विकास पुस्तिका भी बनी होगी उस समय?
5: हाँ, बनी।
4: तो उस पर एक नौकरी मिलनी थी?
5: नौकरी हम
4: नहीं मिली,
5: हर परिवार के एक
4: नौकरी है ना।
5: ज्यादा ज्यादा कादर कादर है, बहुत लोग हम लोग हैं। बाकी
4: पेंशन तो मिल रहा है आपको?
5: हाँ, पेंशन।
4: परिवार में और क्या क्या मिलता है? जैसे मैया सम्मान योजना जो अभी हेमंत सरकार ने शुरू किया है वो मिलता है?
5: हमारे घर में फॉर्म भरा किंतु नहीं पाई।
4: राशन पानी मिलता है?
5: हाँ,
4: राशन मिलता है। चूंकि ये डूब क्षेत्र है तो अब तो कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा ना, वो घर नहीं बनेगा अब यहाँ
5: ना।
4: तो पुनर्वास के लिए कहाँ जगह मिला?
5: पुनर्वास जाएगा एखन अमलेर काटिया।
4: काटिया घर बनाए कि नहीं?
5: हाँ, एखन छाया एक अथाई अच्छे।
4: ओ अच्छा, घर बना लिए?
5: माने पोरे दिया बटे आगे सरकार नहीं दे।
4: ओ, आप लोग खुद से खरीदे हैं?
5: कुटुम छिले कुटुम बसाई मैंने हमारा देख के बसाई।
4: ओहो अच्छा, तो अभी खेती बाड़ी यहाँ चल पाती है गर्मी के समय में? जो जिसमें खरीफ की खेती होती थी धान की फसल वो सब डूब गए?
5: हाँ, वो सब सकल डूब गए।
4: थोड़ी बहुत जमीन बची है जिसमें आप लोग थोड़ी बहुत खेती भी कर रहे हैं।
5: हाँ।
4: क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम भगीरथ टुडू है।
4: क्या करते हैं आप?
6: हम तो अभी मजदूरी करते हैं।
4: कुछ पढ़ाई लिखाई किए थे?
6: हाँ, मैट्रिक तो किए हैं।
4: आप चूंकि विस्थापित परिवार से हैं तो विकास पुस्तिका का कोई लाभ नहीं मिला नौकरी के रूप में?
6: नहीं नहीं,
4: विस्थापित हैं और विकास पुस्तिका पर एक नौकरी भी देनी है, तो कोई दावा आप लोगों ने नहीं
6: किया था? लेकिन
4: नहीं मिली?
6: नहीं।
4: कॉम्पेंसेशन सब मिल गया आप लोगों को, जमीन का जो मुआवजा?
6: कुछ कुछ बाकी है
4: अभी भी।
6: हाँ, वही पुनर्वास सब।
4: खेती की जगह डूब गई?
6: हाँ, ज्यादा डूबे हैं। लेकिन
4: तो अब अनाज कहाँ से मिलता है? खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो फिर खरीद के खाना पड़ता है। अच्छा, राशन मिलता है ना?
6: हाँ,
4: 5 किलो वाला?
6: 5 किलो वाला मिलता है।
4: अच्छा, उससे थोड़ी सी राहत?
6: हाँ, थोड़ा सा राहत है।
4: लेकिन खुद से खेती करके जो आप उपज आपको मिलेगी उसमें अपना खा के भी कुछ बचेगा तो आप बाजार में बेच के कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, वो तो नहीं हो रहा ना?
6: वो नहीं हो रहा है, लेकिन काम कर रहा है।
4: आप लोग मजदूरी करके वो किसी तरह से अपना परिवार, जमीन के बदले जो पैसा मिला था वो पैसा सब कहाँ खर्चा किए?
6: जमीन तो नहीं ले पाए अभी तक, तो जमीन का बहुत ज्यादा रेट हुआ है, अभी तो संभव नहीं है जमीन लेने के लिए। क्या करेंगे अभी?
4: नहीं, वो जो पैसा उस समय मिला था वो पैसा सब कहीं जमीन खरीदे या कोई?
6: थोड़ा बहुत खरीदे हैं।
4: खेती की जमीन है कि घर का?
6: खेती का है।
4: उसमें खेती करते हैं?
6: हाँ, खेती करते हैं, कुछ चाचा लोग हैं उधर ही रहते हैं।
4: परिवार में कितने लोग हैं आपके?
6: अभी परिवार में 7-8 लोग।
4: 7-8 लोगों में अभी कमाने वाले कितने लोग?
6: 2 जन है।
4: 2 जन कमाते हैं? आपके साथ कौन? भाई है?
6: हाँ, भाई है।
4: अच्छा,
6: हमसे बड़ा है, वो भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं,
4: और दोनों मिलकर परिवार चला रहे हैं। इकट्ठे हैं आप लोग?
6: मछली भी पकड़ते हैं।
4: ओ, मछली भी यहाँ जलाशय से पकड़ते हैं डैम का?
6: जी।
4: अच्छा, वो भी से भी कुछ आमदनी हो जाती है?
6: हाँ, उससे भी कुछ होता है,
4: मैंने मिला जुला के किसी तरह से चल रहा
6: है, किसी तरह से चलता है। मतलब टेम के जो फायदा है उसको हम विस्थापित लोगों को तो उस तरह का फायदा अभी तक नहीं मिला है। पुनर्वास स्थल में भी जिस तरह से हम लोगों को बुलाया गया था उस तरफ सुविधा हम लोगों को नहीं मिला।
4: अभी वर्तमान इस परिस्थिति में सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप?
6: सरकार से हम वही कहना चाहेंगे, मतलब हम जो अभी नदी के किनारे जो जितना भी विस्थापित हम लोग हैं, पहले हम लोगों को जो मुआवजा मिले थे कम दम से, मतलब हम लोगों को रिसेटलमेंट हो जाए,
4: रिसेटलमेंट हो। जब तक आप लोग इस जगह हैं अपने गांव में, तब तक जो सरकार की अलग अलग सुविधाएं मिल रही है, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, आंगनबाड़ी है, चिकित्सा के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र, ये सब, उसके अलावे राशन मैया सामान का लाभ मिलता है आप लोग को?
6: हाँ, मिलता है, मतलब
4: वाइफ को मिलता है
6: जी।
4: अच्छा, बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं?
6: हाँ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं,
4: यहीं पर बगल में।
6: बगल में आंगनबाड़ी तो गांव में नहीं है।
4: ओ, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है?
6: नहीं है, इस गांव में आंगनबाड़ी नहीं है। बांधू में मतलब है तो हम लोग को, हमारा आंगनबाड़ी है करंडी में, उतना दूर है तो बच्चा लोग जा नहीं पाते हैं। उतना दूर,
4: कितना दूर होगा यहाँ से?
6: 1.5-2 किलोमीटर होगा।
4: आगे उम्मीद करेंगे सरकार की नजर पड़ेगी, जो विस्थापित गांव है, जो आप लोगों की संस्कृति थी, जो परंपरा थी, शादी ब्याह है, पर्व त्योहार है, एक साथ मिल के आप लोग जिस उमंग के साथ करते थे वो नहीं कर पा रहे।
6: हाँ, वो नहीं,
4: मैंने मान लीजिए अभी सब लोग उठ के इधर उधर चले जाएंगे, जहाँ पुनर्वास में जमीन मिली है या घर बनाए, तो सब तो इधर उधर हो जाएंगे,
6: इधर उधर,
4: तो ये बिखर जाएगा,
6: बिखर जाएंगे। हम लोग जो पहले रीति रिवाज का जो यह था, वो उस तरह का पहले जैसे नहीं होगा।
4: क्या नाम है आपका?
2: भैगोराम मांझी।
4: जब बारिश होती है, वर्षा के समय में, क्या घर तक पानी पहुंचता है क्या? नहीं,
2: नहीं,
4: घर नहीं डूबा है?
2: नहीं।
4: जमीन वगैरह सब डूब गई?
2: नहीं।
4: थोड़ी बहुत खेती के लिए है कि नहीं?
2: खेती के लिए कुछ है।
4: क्या खेती कर रहे हैं?
2: कुछ नहीं, सब्जी वब्जी।
4: रोजगार के लिए और क्या काम करते हैं? यही सब,
2: यही सब
4: बस, और कुछ नहीं?
2: और कुछ नहीं।
4: तो सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, पेंशन वगैरह?
2: पेंशन मिलता है,
4: मिलता है ना, हर महीने मिल रहा है। परिवार में महिला लोगों को मैया सामान का लाभ मिल रहा है?
2: मिलता है, पेंशन
4: राशन भी मिल ही रहा है। पुनर्वास के लिए कोई जमीन आप लोग को मिल गई है?
2: नहीं, मिला था, मैंने काटे पुनर्वास में।
4: लिए कि नहीं?
2: नहीं लिए, कुछ दिन घर बनाया था, उसके बाद नहीं जा पाए।
4: मैंने है अभी?
2: अभी नहीं है, नहीं, दूसरा लोग बना लिया।
4: दूसरा लोग? दूसरा लोग को दे दिए? मैंने आप लोग लिए नहीं?
2: नहीं।
4: तो मतलब रहने का इधर ही विचार है?
2: इधर ही,
4: थोड़ी बहुत खेती कर ही रहे हैं।
2: हाँ,
4: जैसे तैसे घर बार सब नहीं डूबा है, तो यहीं रहने का विचार है? मन नहीं करता है ना?
2: नहीं,
4: कई पीढ़ियों से आप लोग रह रहे हैं, तो मन तो नहीं करेगा?
2: नहीं।
4: खैर, आप लोगों को थोड़ी बहुत बची है, इसमें आप लोग अपने आजीविका का स्रोत ढूंढ रहे हैं। सरकार से क्या और बोलना चाहते हैं आप लोग को?
2: पहले तो हम लोग को माँ बजा बहुत कम मिला था, उसके लिए हम लोग कुछ लड़ भी रहे थे, तो कुछ कोई सफल नहीं।
4: अच्छा, बाकी बिजली वगैरह सब कनेक्शन सब ठीक है, सबको मिला है?
2: हाँ।
4: बिल उल तो नहीं लगता है ना?
2: बिल उल नहीं लगता।
4: ये चीज है कि गांव घर छोड़ने का मन नहीं होता है।
2: नहीं।
4: क्योंकि इससे जुड़ाव है आप लोगों का, बचपन यहीं देखे हैं, पैदा हुए हैं,
2: यही
4: मिट्टी में खेले हैं, इसीलिए छोड़ने का मन नहीं होता। क्या नाम?
6: मेरा नाम है नेपाल किस्को।
4: परिवार में कितने लोग हैं आपके?
6: परिवार में तो हम लोग 4 आदमी हैं।
4: कमाई का अभी माध्यम क्या है?
6: कमाई का अभी तो ऐसे तो नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत चास करते हैं।
4: चास कौन सी जमीन पे कर रहे हैं?
6: वो खेती में थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सब
4: वही सब में करते
6: हैं। हाँ, उसी सब में। वैसे तो साल भर में 12 महीना होता है, तो 6 महीना और 6 महीना इधर, तो उसके बाद फिर इसी के अंदर में ही 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे में तो पढ़ाई लिखाई तो खर्चा होता ही है। एक आदमी तो हॉस्टल में है।
4: अच्छा।
6: वो चांदिल में, तो किसी तरह इधर उधर से मैनेज करते जा रहे हैं।
4: पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को?
6: हाँ, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि अभी तो है, वो लड़का तो है चांदिल में, चांदिल हॉस्टल में, और अभी जो लड़की है अभी पास किए हैं, तो मैट्रिक पास किए हैं, तो इंटर, तो इंटर में तो अभी इधर आमने सामने में नहीं है, नहीं जाना पड़ेगा चांदी, नहीं तो इधर ले पाटा। वो तो बहुत दूर की बात है, कम से कम 10-12 किलोमीटर तो होगा ही ले पाटा, उसके चलते हम लोग उधर भी दिक्कत है। और उसके बाद जैसे कि एक है इचागढ़, इचागढ़ पार करने के बाद बच्चों लोग जब 1 बजे उन लोग टिफिन मिलता है, तो उन लोग को खाने को नहीं मिलता है, उन लोग को नहीं तो आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। उन लोग 4 बजे से कितना बजे छुट्टी होता है, वही दिक्कत है।
4: सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ कुछ मिल रहा है ना आप लोगों को?
6: सरकारी का योजना तो देखो, एक तो है मैया योजना, और इधर डीलर के तरफ से 5 किलो चावल यही मिलता है, और उस
4: पेंशन
6: नहीं मिलता।
4: फिलहाल एक बहुत ही सुदूरवर्ती गांव है चागड़ क्षेत्र का और ये चांडिल बांध का डूब क्षेत्र है, गांव है घुड़लुम। क्या स्थिति है, कई लोगों से हमने बात, अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो लंबे समय से इस चांडिल बांध के पुनर्वास के लिए अलग अलग चीजों को न्याय दिलाने के लिए विस्थापितों के आंदोलन में सहभागिता निभाते रहे हैं। नाम है इनका किरण वीर, गांव भी इनका यहीं पर है, बगल में घर है। किरण से हम जानना चाहेंगे कि इतने लंबे समय से आप देख रहे हो, आपका ये पूर्ण विस्थापित गांव है,
7: पूर्ण विस्थापित,
4: अभी क्या आपको कमी लगता है, अगर न्याय की बात करें, हक की बात करें, सरकार की तरफ से क्या कमी लगता है, आप लोगों को नहीं मिला या मिलना चाहिए?
7: हम लोगों का जो विस्थापित है, जो हम लोगों का मुआवजा मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन कुछ कुछ बाकी छुटा हुआ है कि जिसका कुछ टेक्निकल गड़बड़ था, उस लोगों का 2-5% जमीन का मुआवजा या विकास पुस्तिका बाकी तो हम लोगों का कहना है कि 90% हो गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि 97% 1-2% ही उसको बाकी है। तो हम लोग का अभी भी स्थापित का जो आंदोलन तो चल रहा है, पहले जो पहले आंदोलन जो मांग था जमीन के बदले जमीन दो, घर के बदले घर दो, लेकिन उसका पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का कुछ मांग तो जरूर सफल हुआ है। जैसे हम लोगों का पहले शुरू में सरकार का जो पैकेज था वो 5200 रुपये था, उसका बढ़ के हम लोगों का अभी 6,57,000 अभी हुआ है। तो हम लोगों का अभी जो अभी भी मांग है, जैसे हम लोगों का जो पेमेंट वो तो प्रत्येक गांव या पंचायत के हिसाब से हुआ है, जो जैसे 86 से 90 तक जो पेमेंट आगे पीछे हो गया है, वो जैसे जैसे पेमेंट हुआ है उसका रेट अलग अलग था, 86 में रेट अलग था, 90 में अलग, जैसे जैसे जमीन का जो रेट है वो बढ़ते गया, लेकिन उसका पेमेंट जो उतना नहीं बढ़ा।
4: अब क्या चाहते हैं?
7: हम लोग चाहते हैं कि तापित जो क्षेत्र में जो जलाशय का जो क्षेत्र एक बार किया हुआ है, उसमें 6 महीना पानी रहता है और 6 महीना घट जाता है। हम लोग सरकार से यही भी मांग करते हैं कि जो 6 महीना जो पानी नहीं रहता है उसके लिए कुछ सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, जो हम लोगों का जीवन यापन जो ये अच्छे से कर सकें, और बाकी जो हम लोगों का फ्रेन जो हम लोगों का कुछ टापू एरिया है, हम लोगों का पुराना जगह तो पुराना गांव तो डूब चुका है, केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार जो विभिन्न योजना चल रहा है, जैसे मैया योजना हो गया, पेंशन हो गया, राशन हो गया, बिजली हो गया और आवास हो गया, लेकिन ये जो जितना योजना चलो उसमें कुछ कुछ हम लोग को मिलता है, मैया योजना और पेंशन और राशन ये सब मिलता है, और यहाँ हमारे गांव में स्कूल भी चलता है, लेकिन हम लोग का कुछ कुछ नहीं है। जैसे हमारा यहाँ पर आंगनबाड़ी नहीं है, भेड़ बकरी पालन के लिए वो योजना वो सब नहीं है, जैसे आवास शौचालय ये नहीं है, लेकिन हम लोगों का चाहते हैं जो स्थायी नहीं, जो टेम्पोरली कच्चा कुछ दिन के लिए जो होता है मिले। हम लोग का रोजी रोटी जैसे कि मछली है, मछली में अभी सुन रहे अभी जैसे कि हमारा जो चांडिल डैम जो है ये सरकार बाहरी लोगों को दे रहा है, तो बाहरी लोगों को देगा तो हम लोग जो अभी रोजी मछली पकड़ के हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
4: ये बड़ा सवाल है,
7: सरकार क्लियर नहीं कर रहा। हम लोग का चाहते हैं कि जितना दिन हम लोगों का विस्थापित है, अब विस्थापित का कम से कम पानी का अधिकार ना छीने, मछली का जो रोजी रोटी जो एक आजीविका है उसको कम से कम विस्थापित का होना चाहिए।
3: ये थी चांडिल बांध से विस्थापित ग्राम हुरलुंग के कुछ लोगों से हमारी बातचीत। कार्यक्रम आलोक का आज का ये अंक बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित था। कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता राकेश रमन, ध्वनि अंकन एवं वाचन स्वर शशांक शेखर का। जोहार।
8: आलोक।
0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ग्राम विकास कार्यक्रम आलोक।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म द डॉन का ये गीत, जिसे लिखा था अनवर सागर ने और संगीतबद्ध किया था दिलीप सेन और समीर सेन ने।

0: प्यासा सावन फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। गीतकार थे संतोष आनंद, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: अनजान ने और संगीतबद्ध किया था पप्पी लाहिरी ने।
1: श्रोताओं, 24 जून 2026 यानी बुधवार को रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत आप सुन सकते हैं यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रीत सिंह को। अपने समस्याओं के समाधान के लिए आप कॉल कर सकते हैं 06572960445 पर।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

रोमांस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आरडी बर्मन की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने।

श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म गुरु का ये गीत, जिसे लिखा था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेखे के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
5: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at second civil investiture ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan, and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London.

0: कि आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। आप सोचो, वो निर्णय नहीं लिया होता, वो बीज ही नहीं बोया होता, तो क्या आज वो बीज वट वृक्ष बन पाता? मैं हमेशा कहता हूँ, जो बीज बोया गया, जो नींव रखी गई, वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है, जो बीज बोया, बीज आज वट वृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है। तो हमारे लिए तो जी देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी का सम्मान है, मैं ऐसा ही मानता हूँ।
1: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is Dr. V. Kamakoti, an eminent computer scientist and academician. He is currently serving as the director of Indian Institute of Technology, Madras. Through his contributions to indigenous computing technologies, digital innovation and education, Dr. Kamakoti has played a significant role in strengthening India's technological capabilities. His work reflects the growing importance of scientific innovation in achieving the vision of an Atmanirbhar Bharat. This is what he said in an exclusive interview to Akashwani.
2: My academic journey started. I joined a school called Vidya Bharati, a very cool school. I was very much deeply into cricket. Then I took violin and I started learning violin. And that journey continued for 18 years. After that, plus one and plus two, I joined another school, PS Senior Secondary School. That was a turning point. A in education is very, very important today. See, any technology that we see, there's a good and bad. And it's very important to take all the good and eliminate all the bad. And this elimination of the bad comes from two good habits, good type of people who develop those systems, and then regulations. So three things play an important role. Today we have at least 3-4 companies who are working based on Shakti, and that is extremely important today. We need semiconductor companies here, not just design companies, but system companies which can make the entire system. So we have developed, if you say a mobile phone, right, there's some person who make the application processor. There's somebody who licenses the processor to them. So there's a company which licenses the processor and somebody makes a chip out of it. So we have companies which make the core and license it.
1: Among this year's inspiring Padma awardees is Budh Tai, a grassroots social worker from Maharashtra whose life has been dedicated to the welfare of tribal communities. For decades, Budh Tai has worked tirelessly to improve the lives of women and children in remote tribal regions through her efforts in education, healthcare awareness, nutrition and community empowerment. She has helped bring positive change to some of the most underdeserved sections of society. Let's listen to what she said, speaking exclusively to Akashwani News.
3: गांव हीरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ। तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है। हम उनके पास जाना है, उनके साथ ही घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद ही बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: The Padma Awards have long celebrated the extraordinary achievements of individuals across generations. This year's list includes accomplished personalities from fields as diverse as music, cinema, sports, public affairs,

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
3: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केटप्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस रहा। DGSND एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
2: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
3: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
2: जी,
3: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
2: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
3: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहाँ पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं, वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। आपका GSTN है, उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
2: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जैम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसायी, हम MSME की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
3: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
2: जी, तो जो जेम है एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
3: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है। तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है।
2: जी।
3: एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप हैं, जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
2: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
3: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी, उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
2: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
3: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
2: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
3: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
2: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मेहर जी, तो जैम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
3: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही। ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस, जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जैम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जैम क्या अवसर देता है?
3: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
2: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जैम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
3: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहे।
2: बिल्कुल, और अंत में ये जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: जैम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है, और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जैम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
2: जी हाँ, निसंदेह होता हूँ डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
1: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
0: मंथन। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के मेहमान।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आज के मेहमान में हम आपको मिलवाते हैं किसी खास व्यक्तित्व से। इसी कड़ी में हमारे आज के मेहमान हैं NIT जमशेदपुर के डायरेक्टर श्री गौतम सूत्रधर। तो गौतम जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर। NIT जमशेदपुर प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक है और आपके नेतृत्व में कॉलेज ने एक नया मुकाम हासिल किया है, पर आज की बातचीत में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हासिल की, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली।
1: देखिए, मेरा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक ये शिक्षा पश्चिम बंगाल में हुआ है।
0: अच्छा।
1: बचपन में ही मेरा मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर में रुचि था, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी वो थी ऑटोमोबाइल्स।
0: अच्छा।
1: सड़क पर जब कोई गाड़ी गुजरती थी उस टाइम में मन में बहुत सवाल आती थी।

0: लगता है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया है।
1: अच्छा,
0: 1985 में मैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो जलपाईगुड़ी में है नॉर्थ बंगाल में, उधर में मैं एडमिशन लिया थ्रू वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस।
1: अच्छा अच्छा सर, एक छात्र से एनआईटी डायरेक्टर बनने तक का सफर कैसा रहा?
0: ना ये तो बहुत ही लंबा सफर है, लेकिन हर जगह में मैं कुछ कुछ सीखा है। मैं इससे पहले जो एनआईटी मणिपुर में गया था वो है मेरा 9th जॉब।
1: अच्छा,
0: उससे मैं शुरू में 5 साल मैं इंडस्ट्री में थे।
1: अच्छा,
0: इंडस्ट्री में था हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड जिधर में कार बनाते थे, उधर में थे 1 साल।
1: अच्छा,
0: उसके बाद इंडियन रेलवे में थे, उधर में 4 साल थे।
1: अच्छा,
0: उसके बाद हमको लगा है जी इंडस्ट्री की लाइफ इज वेरी स्टीरियोटाइप जॉब, तो मैं ये जो शिक्षा सीखा है और जानने के लिए टीचिंग करना महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज उसमें दो साइड ही कर सकता है।
1: हाँ,
0: हम इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है, और जो आप सीख रहा है वो स्टूडेंट लोग को देना भी
1: बता भी सकते हैं,
0: बता भी
1: जी,
0: सकता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो इसीलिए मैं सोचा है कि मैं टीचर बनूं, देन अल्टीमेटली मैं ज्वाइन किया था निफ्ट रांची जो अभी नियम एक्ट हो गया। देन मैं इधर से चला गया था टेक्सटाइल कॉलेज श्रीरामपुर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, इंडिया ओल्डेस्ट कॉलेज।
1: अच्छा,
0: देन उधर से मैं चला गया कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन उधर से मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मैं सोचा था मेरा तो इतना दिन, मैं फुल प्रोफेसर हुआ था 15 साल का करीब करीब 2003 में फुल प्रोफेसर हुआ।
1: अच्छा,
0: मैं ज्वाइन हुआ 91 में एज ए टीचर।
1: अच्छा,
0: उसके पहले 5 साल मैं इंडस्ट्री में थे। तो जब मेरा 15 ईयर्स हो गया फुल प्रोफेसर, देन आई थॉट कैन आई गो फॉर डायरेक्टर और वाइस चांसलर।
1: जी बिल्कुल,
0: देन आई ट्राइड।
1: अच्छा अच्छा सर, एनआईटी की खासियत क्या है, या यू कहें कि जब कोई छात्र एनआईटी में कदम रखता है तो उसे अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज की तुलना में यहाँ क्या अलग मिलता है?
0: बहुत सारा अलग है। सबसे बड़ा अलग जो है, ऑल एनआईटीज आर जस्ट लाइक मिनी इंडिया। सो इधर में स्टेट का 50% आता है
1: जी।
0: और स्टेट रेस्ट ऑफ द 50%, मान लीजिए हम लोग का 752 एग्जैक्ट पर ईयर बीटेक स्टूडेंट आता है, उसमें आधा मान लीजिए 750 का आधा, दैट मींस 375-376 बेसिकली
1: जी,
0: 752 इज सीट
1: जी।
0: तो 376 स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम झारखंड स्टेट।
1: अच्छा,
0: 376 आता है ऑल इंडिया से।
1: अच्छा,
0: तो ये जो यूनिक है ये आईआईटी में नहीं है।
1: अच्छा,
0: आईआईटी में देयर इज नो कोटा फॉर ओन स्टेट।
1: अच्छा,
0: ट्रिपल आईटी में भी नहीं है।
1: अच्छा, लेकिन यहाँ
0: ओनली एनआईटी में है देश में।
1: अच्छा,
0: तो इसमें क्या होता है, सब लोग मिलना जुलना जो बोलते हैं ना, एक मिनी इंडिया में बोल रहे हैं आपको,
1: बिल्कुल
0: इसमें सब कल्चर है। साउथ इंडियन मिलेगा, नॉर्थ इंडियन मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का लड़का है ओके, एंड ईस्ट का लड़का तो है ही है। तो ऑल इंडिया का आप कल्चर देख सकते हैं,
1: देखने मिलता है
0: इसमें। ये जो मतलब मिक्सिंग वे बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज और एनी सेंट्रल इवन इंजीनियरिंग कॉलेज, बिकॉज दैट कॉलेज में ये सुविधा नहीं है। ऑल इंडिया से
1: स्टूडेंट्स आ रहे हैं
0: वो नहीं है। सो दिस इज मोस्टली हेल्प करता है फॉर द नर्चरिंग ऑफ देयर करियर।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई में क्या बदलाव देखने को मिले हैं?
0: एक्चुअली एनएपी 2020 एक बहुत बड़ा एक चीज है, ये दो मिनट में बोलना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन आप इफ यू से जी आप हमको एक लाइन में बताइए
1: जी, जी।
0: तो मैं बोलेगा जी इट वॉज बेसिकली टीचर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बिफोर 2020 के पहले, बट अभी जो है ए स्टूडेंट सेंट्रिक। इट इज द फर्स्ट वन लाइन। सेकेंड लाइन इज दैट इट वॉज ए स्टैटिक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कुछ सिलेबस और करिकुलम मुताबिक पढ़ाओ, उसमें मैकेनिकल मैकेनिकली पढ़ाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली पढ़ाएगा, लाइक दैट। सो आई एम मैकेनिकल, आई एम नोन एज ए मैकेनिकल इंजीनियर।
1: बिल्कुल,
0: बट सपोज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बट आई हैव सम इंटरेस्ट इन मेटलर्जी,
1: ओके,
0: मान लो सम इंटरेस्ट इन कंप्यूटर
1: जी,
0: तो ये सुविधा नहीं था उस टाइम।
1: अच्छा,
0: इसमें क्या हुआ, मान लीजिए टोटल हम लोग का क्रेडिट है 160 क्रेडिट।

0: चार साल में करना पड़ता है
1: जी,
0: दैट मींस 40-40 एवरेज। हां
1: हां,
0: नाउ इफ ए स्टूडेंट इज ब्रिलियंट मे बी अबव 7.5 और
1: जी
0: 7 ग्रेड पॉइंट मिलेगा ना,
1: हां
0: हां, तो देन वी आर गिविंग देम ए प्रिविलेज। आप मान लीजिए 4 क्रेडिट कंप्यूटर से, 4 क्रेडिट मेट्रोलॉजी से, 4 क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक्स से, 4 क्रेडिट सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ सकते।
1: अच्छा, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है।
0: ये वाला क्या होता है, आपको मेजर और माइनर डिग्री बोलता है
1: जी।
0: सो मेजर डिग्री में भी मैकेनिकल, माइनर डिग्री में भी कंप्यूटर
1: जी जी,
0: माइनर डिग्री में भी सिविल इंजीनियरिंग में भी मेट्रोलॉजी।
1: बहुत अच्छी
0: ये वाला चीज है। और एक चीज है, मान लीजिए पहले 4 साल का कोर्स था, उसमें मान लीजिए किसी को घर में कुछ एक्सीडेंट हुआ
1: जी,
0: ऐसे भी मैं देखा इतना दिन एकेडमी में
1: जी, जी।
0: दे उसको पढ़ाई छोड़ करके कोई हेल्प मिलता है तो ठीक है, नहीं तो चल जाना पड़ता
1: जी, बिल्कुल।
0: अभी क्या हुआ है, मान लीजिए आपको 3 साल के बाद घर में कुछ हुआ है और उनका कुछ तबीयत खराब है,
1: अच्छा,
0: तो ही कैन लीव
1: 3
0: साल के बाद, एंड अगेन विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स ही कैन कम एंड ज्वाइन एंड कंप्लीट द स्टडी। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री।
1: अच्छा,
0: इसमें एक बार नहीं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। मान लीजिए आ गया, थर्ड ईयर का कोर्स कंप्लीट, फिर चला गया।
1: अच्छा, तो यानी अगर परिस्थिति बुरी हो गई है तो भी स्टूडेंट अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। इवन मान
0: लीजिए 2 साल के बाद घटना हुआ, भगवान चाहे किसी को नहीं हो
1: जी,
0: लेकिन 2 साल में होगा तो उनको हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स देकर के निकल सकते हैं, बाजार में कुछ काम वो कर सकता है।
1: अच्छा,
0: 3 साल के बाद जाएगा तो हम लोग डिप्लोमा भी दे सकता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो बोलेगा नहीं, हम लोग ये नहीं लेगा, बाद में फिर
1: डिग्री ही चाहिए,
0: थोड़ा सा संभल करके मैं 2 साल के बाद आ सकता है।
1: हाँ,
0: तो ये हम लोग 7-8 साल तक रख सकते हैं।
1: अच्छा, ये बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, भागदौड़ भरी जिंदगी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच आप खुद को तनाव मुक्त यानी रिलैक्स रखने के लिए क्या करते हैं?
0: एक्चुअली ये सवाल बहुत ही मेरा पसंद है, बिकॉज मेनी पीपल आस्क मी ऑफ द लाइन,
1: अच्छा
0: जी, व्हाई आई एम सो एनर्जेटिक।
1: ओके, हम भी जरूर जानना चाहेंगे।
0: वो मैं आपको बताएगा, लेकिन मैं देखा है, मैं उतना खेला में उतना इंटरेस्ट नहीं है।
1: अच्छा,
0: जस्ट देखते हैं कभी कभी, मूड होता तो क्रिकेट देखता है, जो देखता है इट्स टेम्पररी।
1: अच्छा,
0: बट जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता है वो गाना।
1: अच्छा,
0: और मैं म्यूजिक भी बजाता है।
1: अच्छा,
0: मेरा गिटार बजाता है स्टूडेंट लाइफ से।
1: अच्छा,
0: तो ये हमको सबसे बड़ा रिलैक्स देता है।
1: ओ, तो संगीत तो वैसे भी हर किसी के दिल के करीब होता है, तो आपके दिल के करीब भी कोई ना कोई गाना तो जरूर होगा, तो आप अपने पसंदीदा गीत हमें बताएं ताकि हम आपको वो गीत सुनवा सके।
0: सबसे ज्यादा पसंद तो आई थिंक इफ यू टेक ए वोट, लता जी।
1: लता जी, ओके, तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

0: ये गीत कैसा लगा आपको?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: सर, वैसे तो संगीत तनाव को कम करता ही है, फिर भी
2: हम जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के दबाव के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या कैंपस में कुछ खास व्यवस्थाएं भी हैं?
1: मैं तो बहुत ही व्यवस्था किया है, बिकॉज आई एम लव टू म्यूजिक, सो इसीलिए मैं तो स्टूडेंट्स का वेल बीइंग के लिए ना
2: हाँ,
1: हर तरीका म्यूजिक मैं इंतजाम किया था,
2: अच्छा
1: और एक एक जगह भी छोड़ दिया कि
2: हाँ,
1: भाई तुम लोग को जिस टाइम में चाहिए आप आइए।
2: हाँ
1: एक मतलब मेरा दो अलमारी में गिटार, स्पेनिश गिटार, बैंजो, तबला, हारमोनियम, एवरीथिंग गिफ्ट, ओके, ड्राम्स, एवरीथिंग इज दैट,
2: अच्छा
1: ओके। तो दो टीचर को मैं उसके ऊपर मैं भार दिया है, और ये लोग का तो अपने आप साल में तो दो तीन बार वो लोग बनाता है, इंटरनेटी फेस्टिवल,
2: अच्छा
1: एनआईटी
2: अच्छा
1: फेस्टिवल,
2: हाँ
1: देन इंटर एनआईटी कंपटीशन उसको
2: हाँ
1: भी
2: हाँ
1: करता है, देन ड्रामा, ये लोग इतना टैलेंट है,
2: हाँ हाँ
1: इतना टैलेंट है, वो लोग हर कोई प्रोग्राम, मान लीजिए कोई मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तीन दिन
2: हाँ
1: का कुछ प्रोग्राम हो
2: हाँ
1: रहा
2: हाँ
1: है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समथिंग,
2: जी
1: तो रात में वो लोग कुछ कल्चरल रखता है,
2: हाँ
1: वो
2: हाँ
1: लोग अपने आप कुछ तैयार कर लेते हैं, इतना
2: हाँ
1: अच्छा ड्रामा करता है ना।
2: हाँ
1: आई एम अटेंडिंग ऑल द
2: तो
1: प्रोफेशनल
2: यानी
1: प्रोग्राम्स।
2: स्टूडेंट्स के तनाव मुक्त रहने के लिए ये फंक्शन तो काम आते ही हैं, साथ ही आपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था कर दी है
1: हाँ
2: उससे भी स्टूडेंट्स अपना
1: एकदम
2: तनाव
1: एकदम, मैं
2: कम
1: उन लोग
2: कर
1: को
2: सकते
1: एनकरेज
2: हैं।
1: देने के लिए मैं 90 मोर देन 90% प्रोग्राम में मैं रहता है, मेरा
2: अच्छा
1: मिसेज रहता है,
2: अच्छा
1: हम लोग रहता है,
2: हाँ हाँ हाँ
1: उसमें वो लोग काफी इनकरेज मिलता है,
2: जी
1: मैं तो
2: बिल्कुल,
1: सब मैं
2: रहे
1: कभी
2: तो
1: कभी गाना भी गा देता
2: बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ गुनगुनाना चाहेंगे क्या?
1: हूँ। मैं कर देगा, कोई इशू नहीं है, करेगा।
2: हाँ सुनना चाहेंगे जरूर,
1: मैं
2: कुछ
1: तो
2: गुनगुना दीजिए, दो चार लाइन।
1: किशोर कुमार का मैं बहुत ही फैन
2: हाँ
1: हूँ,
2: हाँ
1: मन्ना दे,
2: अच्छा
1: और
2: सुनाइए एक दो लाइन।
1: मान लीजिए एक मन्ना दे जी का
2: हाँ
1: खाली
2: हाँ
1: गला में दो दो लाइन,
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये आनंद का गाना है, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए,
2: वाह
1: कभी देखो मन में ही जागे, कभी

0: अगेन।
1: वाह बहुत अच्छा और बहुत सुरीला गाते हैं आप। और अगर
0: किशोर कुमार का एक गाना मैं सुनाता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा रोमांटिक गाना है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने।

0: वो ठीक से कटेगा क्या गोबर, मतलब ठीक ठाक प्रोग्रामिंग नहीं होगा तो गलत भी कट
1: जाएगा, गलत भी हो सकता है।
0: एंड उधर में डॉक्टर आपको ऐसे करके पैटिंग करके बोलेगा आई एम विथ यू
1: जी,
0: तो इसका जो भरसा है वो आप AI से नहीं मिलेगा,
1: नहीं मिल सकता।
0: तो और टीचर लोग को जॉब रहेगा, वो लोग को जॉब रहेगा, वो डॉक्टर को जॉब रहेगा जिसमें ह्यूमन टच है
1: जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आने वाले वर्षों में आप इस NIT को कहाँ देखना चाहते हैं?
0: देखो मेरा विजन तो बहुत ही एम्बिशियस एज वेल एज प्रैक्टिकल। मैं आने का टाइम में NIT पता नहीं 3 साल पहले इनको रैंक उतना अच्छा नहीं था। मे बी यू डू नॉट नो लास्ट टाइम वी बिकेम द विद इन 100 इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, 82 रैंक हुआ था लास्ट टाइम। एंड मैं वो जो पहले क्वेश्चन का आता ना उसके लिए हम लोग दैट सिलेबस भी ऑडिट करते हैं।
1: अच्छा
0: ओके, करिकुलम में AI असिस्टेड थिंग्स सब घुसा रहा है।
1: अच्छा,
0: वी हैव मेड 3 गुड लेबोरेटरीज इन AI।
1: हाँ
0: हाँ,
1: अच्छा।
0: इन मास्टर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
1: जी जी,
0: ML मतलब मशीन लर्निंग।
1: हाँ हाँ,
0: तो ये सब चीज हम लोग को बहुत अच्छा लेबोरेटरी बनाया।
1: अच्छा,
0: तो अभी आप जो पूछ रहा है ये नॉट ओनली NIT को मैं एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में देखता है बल्कि मैं सोच रहा है एक प्रीमियर रिसर्च और इनोवेशन हब के तरफ। एंड
1: अच्छा।
0: मेरा तो मेरा और मेरा इंस्टीट्यूट सब टीचर को एक बहुत बड़ा एक मिशन है कि हम लोग इसको एक यूनिक इंस्टीट्यूट बनाएगा, मॉडर्न इंस्टीट्यूट NIT जमशेदपुर, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री लिंकेज, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, वो बहुत जरूरी है।
1: अच्छा सर, आपने इनोवेशन की बात की तो कैंपस के भीतर स्टार्टअप और नए आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए संस्थान क्या कुछ कर रहा है?
0: हाँ, वी हैव मेड अ सेक्शन 8 कंपनी।
1: अच्छा,
0: विद इन NIT जमशेदपुर।
1: अच्छा,
0: यस, दिस इज वर्क्स लाइक फॉर NIT जमशेदपुर, इट इज अ टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन।
1: अच्छा
0: ओके, तो उसमें हम लोग एक ITBI खुला है, ओके, दैट इज इंक्यूबेशन सेंटर एंड दैट इंक्यूबेशन सेंटर इज सपोर्टेड बाय DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 5 crore rupees टू स्टार्ट।
1: अच्छा,
0: एंड ऑलरेडी यू प्लीज कम, आई विल इनवाइट यू पीपल टू कम एंड सी आवर इंक्यूबेशन सेंटर। वी हैव गिवन 10 स्टार्टअप्स शुरू किया है, तो ये 10 स्टार्टअप को प्राइमरीली सबको 2 lakh करके दिया है।
1: अच्छा,
0: एज ए सीड मनी। आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स हम लोग उनको और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करूंगा।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है।
0: यूनिक।
1: अच्छा सर, जो छात्र असफलताओं से जल्दी निराश हो जाते हैं उन्हें आप अपने करियर के अनुभवों से धैर्य और फोकस बनाए रखने की क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हॉट स्टूडेंट जो आज कुछ असफलता कारण में कुछ उनका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, बट ये बहुत मुश्किल है आपको बोल रहा है।
1: हाँ,
0: हम लोग वो लोग को बताया, मतलब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का जो होता है ना बीच में मॉनिटर, उसको हम लोग बोलते हैं जो हॉस्टल में थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करो कि कौन कौन स्टूडेंट धीरे धीरे अकेला हो जा रहा है।
1: अच्छा,
0: दे डू नॉट वॉन्ट टू कम इन एनी कॉम्पिटिशन, दे आर नॉट कमिंग एनी एक्टिविटी
1: जी,
0: इवन दे अपने आप रहता है, खाते और सो जाते चला जाता है। तो वो लोग को आइडेंटिफाई करो कुछ दिन, इजनली डिप्रेशन इज वर्किंग ऑन नॉट।
1: अच्छा,
0: इसीलिए हम लोग काउंसिलर रखा है,
1: यानी उसका बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा है,
0: बिहेवियर को हम लोग मॉनिटर कर रहा है एंड नॉट ओनली दैट काउंसिलिंग करते है उसको, क्या प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को पेरेंट्स का प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, किसी को फादर गुजर गया, किसी को मदर नहीं है एंड पापा और किसी से शादी कर लिया, लाइक दैट देयर आर मेनी सोशल प्रॉब्लम्स आर कमिंग। तो हम लोग ये लोग से थोड़ा सा कम्युनिकेट करके, देखो हर 5000 बच्चे को देखना बहुत
1: मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
1: लेकिन आपकी कोशिश रहती है स्टूडेंट्स के बीच में से ही आप किसी स्टूडेंट को निकाल कर उससे मॉनिटर करवाते हैं,
0: लोग से मॉनिटर हम लोग का करता है एंड टीचर हम लोग का। एक्चुअली इफ यू थिंक आवर सिस्टम, सी इन हॉस्टल वन इज हॉस्टल वार्डन, वार्डन का नीचे में सुपरवाइजर,
1: अच्छा
0: सुपरवाइजर के नीचे में मेस कमिटी, मतलब हॉस्टल कमिटी। हॉस्टल कमिटी तो मान लीजिए 6-7 विंग वाइज लड़की लोग रहते, मान लीजिए 10-12 300 बची है, 10-12 तो रहते ही
1: रहते हैं,
0: वो लोग आपको सुपरवाइजर को खबर देते हैं।
1: फिर स्टूडेंट्स को आप क्या फोकस करने कहते हैं?
0: देखो फोकस स्टूडेंट्स को तो मैं तो डायरेक्टली मुश्किल है
1: जी,
0: लेकिन हम लोग यही चाहता है ये वो लोग को सिखाने के लिए, ये देखो यू केम फॉर ए लॉन्गर और वेरी बिगर ड्रीम के लिए, एंड फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन, फेल्योर आएगा ही, नो सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज देयर जिसको फेल्योर नहीं हुआ, मैं ये समझाता है जो भाई इफ यू गो फ्रॉम हियर टू रांची सम पार्ट ऑफ द रोड विल बी अनड्यूलेटेड लाइक दैट इन योर लाइफ दैट फेल्योर इट इज अ पार्ट ऑफ द सक्सेस, इट होगा ही, रिजेक्शन होगा ही, सो इसमें आप लोग एक छोटा निराश नहीं होना, एंड उसमें आधा स्टूडेंट वो ये हो जाता है, निराश हो जाता है, जो हम लोग का नहीं होगा, मेरा ये सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ये लोग डिसीजन ले लेता है, यही मैं बोलता है जी भाई फेल्योर इज ए पार्ट।
1: जरूर, तो हमें उम्मीद है कि आपकी सलाह पर जरूर अमल किया जाएगा, और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए आपसे बात करना एक बेहतरीन अनुभव रहा। आपने अपना समय दिया, अपने विचार और प्रेरक बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आज के मेहमान का ये अंक आज यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: कुमारवीर सिंह
0: कुमारवीर सिंह जी, हम तो अच्छे हैं, आप अपनी सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और हमारी धरती भी बहुत बढ़िया है। मैम
0: बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: पता है परसों मैंने प्लांट्स लगाए थे। मैम
0: अच्छा, क्या क्या लगाया था आपने?
1: मैंने मिर्चा का पौधा लगाया था
0: अच्छा, और
1: और मैंने टमाटर के जो बीज होते हैं ना, मैं उसको मिट्टी में गाड़ कर उस पर पानी डाला था, तो आज आज छोटे छोटे पौधे आए हैं।
0: वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या आप किचन गार्डन बना कर रखे हुए हैं अपने घर पे?
1: मेरे घर के सामने जो जगह है ना, मैं वहीं पर पौधे लगाते रहता हूँ और वैसे फल या पत्ते भी निकलते रहते हैं और इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है।
0: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भी पौधे लगाएं, और फलदार वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। इससे हमारे वातावरण में जो है एक हरियाली भी छाई रहेगी और शुद्धता भी बनी रहेगी।
1: मैम, और इससे हमारे वातावरण को बहुत फायदा भी होगा।
0: बिल्कुल सही कहा। तो वीर सिंह, आज के इस प्रोग्राम में आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: मैम मुझे सुनना है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है, वो वाला हाँ वाला गाना मुझे सुनना
0: तो चलिए दोस्त, हम आपकी फरमाइश आप तक लेकर आते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: आपकी फरमाइश
1: नमस्ते दीदी।
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं भाई?
1: मैं कोटवा साझा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: राम स्वरूप गुप्ता भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो
1: आज
0: आपकी फरमाइश में।
1: पहले बार फोन लगा दीदी आज।
0: इसीलिए तो कह रही हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे आकाशवाणी जमशेदपुर के परिवार का एक सदस्य बन गए।
1: हाँ दीदी, आप लोग भी बन गए दीदी परिवार।
0: जी हाँ, समूचा आकाशवाणी जो है, जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं, सभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा
1: हाँ
0: तो एक
1: दीदी,
0: परिवार ही है श्रोताओं का और आकाशवाणी का।
1: हाँ दीदी,
0: राम स्वरूप भाई, क्या करते हैं आप?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ दीदी। सवारी इकट्ठा करके तीर्थ यात्रा के लिए घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: अच्छा, तो कहाँ
1: हाँ
0: कहाँ
1: दीदी,
0: लेकर जाते हैं आप अपने टूरिस्ट को?
1: अभी दीदी मैं 3 तारीख को आया हूँ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और मनोकामना मथुरा वृंदावन सरस्वती द्वार होते हुए
0: अच्छा
1: अयोध्या प्रयागराज करके। हाँ,
0: जी,
1: इसके बाद अब सितंबर में बनाऊंगा बद्रीनाथ के साथ साथ गया जी भी बनाऊंगा।
0: अच्छा।
1: जनवरी में अपना गंगा सागर जगन्नाथ पुरी रहता है। बीच में कहीं मथुरा वृंदावन निकल जाता है। इधर खाटू श्याम अपना सीहोर बागेश्वर भी बन जाता है कभी कभी, सीहोर वगैरह।
0: तो आप लोगों को तो दर्शन कराते ही हैं, खुद भी आपका दर्शन हो जाता है।
1: हाँ दीदी, अब हम लोग खुद दर्शन करते हैं, उन्हीं लोगों को पूर्ण प्रताप में हमको भी मिलता है दीदी। उन लोग तो आते हैं, हम लोगों को कैसा मिलेगा बताओ।
0: सही कहा आपने।
1: हाँ,
0: राम
1: उनका भी
0: स्वरूप भाई,
1: टेंशन
0: आप
1: नहीं
0: इतना
1: था।
0: अनूठा काम करते हैं, ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है।
1: अब आप ही लोगों का आशीर्वाद दीदी, दीदी बहन लोगों भैया लोगों का आशीर्वाद है सब।
0: जी हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर बरसा है, और तब तो आप भगवान के इतने निकट रहते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: राम स्वरूप भाई, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मौसम कैसा है?
1: अभी मौसम तो थोड़ा हल्का गर्मी दीदी, सुबह सुबह बदली रहता है। एक 2 रोज पहले पानी हल्का गिर रहा था, पानी अभी नहीं गिर रहा। पानी अभी कुछ कुछ गर्मी है दोपहर में, हल्का सा रात में भी महसूस होता है गर्मी।

0: जी हाँ, इस बार बारिश देखिए थोड़ी कम होने की संभावना जताई जा रही है।
1: नहीं, मौसम विभाग के अनुसार भी तो ऐसी महसूस हो रहा है।
0: जी हाँ, सही कह रहे हैं। और देखिए क्या होता है, अगर बारिश अच्छी हो गई तो ऊपर वाले की मेहरबानी होगी किसान भाइयों पर।
1: हाँ,
0: रामस्वरूप भाई, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश में?
1: जी मेरे को महुआ का सुना दो, दोनों ने किया था प्यार, मोहम्मद रफी जी का वाला।
0: बहुत ही प्यारा गाना है ये तो।
1: जी हाँ
0: तो चलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी पसंद का ये
1: दीदी,
0: गाना।
1: सुनिए ना,
0: हाँ
1: इस गीत को तो पहले रेडियो जमशेदपुर के आरजे बहन लोग, दीदी लोग आप लेंगे, उसके बाद भैया लोगों के साथ सुनेंगे, है ना?
0: जी
1: तो उसके बाद मेरा परिवार, बड़ा लड़का पीएस गुप्ता, उसके दो लड़के श्रियांश गुप्ता, शशांक गुप्ता, लड़की सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के आनंद जैन, हंसी जैन, छोटा लड़का वीर गुप्ता, पत्नी का नाम हीरा देवी। तो उसके बाद रेडियो जमशेदपुर के जितने भी श्रोता भाई बंधु ग्रुप में अदर ग्रुप में, उसके साथ इस गीत को सुनेंगे, अच्छा लगेगा ना?
0: तो हमारे जितने भी श्रोता हैं, हम अपने तमाम श्रोताओं के साथ आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना महुआ फिल्म से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो।
0: जी हाँ
1: हाँ हेलो मैडम।
0: जी हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई?
1: सोयब
0: सोयब, कहाँ से आपने हमें फोन किया है?
1: गुजरात बड़ौदा।
0: गुजरात बड़ौदा के सोयब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश में। सोयब, क्या करते हैं आप?
1: हम ड्रेस का काम करते हैं,
0: क्या का काम करते हैं?
1: भरत काम आता है ना, लेडीज जो ड्रेस पहनते हैं ना,
0: अच्छा
1: चोली
0: अच्छा
1: साड़ियाँ कन्या चोली।
0: इन चीजों का बिजनेस है आपका बड़ौदा में? क्या आप पारंपरिक कपड़े ही रखते हैं अपनी दुकान पे?
1: ना ना ना, अहमदाबाद से काम लाते हैं,
0: अच्छा
1: मैं बड़ोदे में बनाते हैं,
0: अच्छा बड़ौदा में
1: यानी कि
0: बनाते हैं।
1: ऑर्डर का काम करते हैं।
0: अच्छा
1: यानी कि तुम्हारा ऑर्डर हो, तुम कहो ना कि ब्लाउज बनाने का है, कन्या चोली बनानी चाहिए,
0: अच्छा
1: ऐसा ऑर्डर का काम करते हैं।
0: कढ़ाई करते हैं या फिर पूरे के पूरे लहंगा चोली की सिलाई भी करते हैं?
1: ना सिलाई का काम नहीं करते, हैंडवर्क का काम करते हैं,
0: हैंडवर्क का
1: हाथ
0: काम
1: से
0: करते
1: जो भरत
0: हैं।
1: भरते हैं ना, हाथ से वो काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कि आप इतना अच्छा खूबसूरती से बड़ी ही सफाई के साथ ये काम करते होंगे, क्योंकि
1: हाँ,
0: इसमें तो काफी मेहनत भी लगता है और समय भी लगता है ना दोस्त?
1: पूरे दिन बैठे रहने का मैं काम एक ही, यानी कि सर नीचा करके पूरे दिन ऐसा ही काम करते,
0: तो निडल
1: सुबह
0: वर्क
1: 7 बजे
0: आपका
1: काम
0: मशीन से होता है या फिर हाथ से ही सिलाई करते हैं?
1: ना, हाथ से काम करने का होता है।
0: अच्छा
1: मोबाइल में बोलोगे ना कि हैंडवर्क का काम कैसे करते, तो आपको दिखाएंगे यूट्यूब
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है, आपसे
1: पे।
0: बातें कर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ोदरा के भाई हमारे अपने शहर जमशेदपुर में आ गए हैं। ये बताइए भाई, आज कौन सा गाना सुनना है हमारे आज के प्रोग्राम में हेलो आपकी फरमाइश में?
1: गाना तो ऐसा सुनना चाहते हैं कि आप सुना हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर हमारी फरमाइश हो जाए तो।
0: हाँ हाँ बताइए आप अपनी फरमाइश, कौन सा गीत
1: क्योंकि
0: सुनना है?
1: हमारे साथ एक जन्नत का वादा किया था कि जब भी हम तुम्हारे को भूल जाएंगे तब तू ये गाना सुन लेना, तो तेरे मन तेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी।
0: अच्छा
1: यानी कि एक लड़की ने मेरे को ऐसा बोला था कि जब मैं तेरे साथ गद्दारी कर जाऊँ ना तब ये गाना सुन लेना।
0: कौन सा
1: हाँ,
0: गाना था वो?
1: एक दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का, ये गाना मेरे को बोला था।
0: बड़ी दर्द भरी दास्तां है आपके, तो चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल तो हम आपको आपकी पसंद का सुनवाते हैं ये गाना पुलिस पब्लिक फिल्म से।

0: बातें अधूरी है पर वक्त पूरा हो चला है। आपकी चाहतों का ये सिलसिला अब थमने को चला है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन के 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था प्रीतिका। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। शब खैर, शुभ रात्रि।
1: हेलो, आपकी फरमाइश। ये था श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

0: की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।